मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है प्रातः के 5:58 और 11 सेकंड। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलरमरो मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। अतीत पर अफसोस करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। ये था चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के संकटों का निवारण करने के लिए सदैव अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखते हैं। जब भक्त प्रभु को पुकारते हैं तो वो अवश्य ही उनकी पुकार सुनते हैं और उनके दुखों को दूर कर देते हैं।

प्रभु श्री राम के नाम के जाप मात्र से मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है, सभी विकारों से दूर होकर प्रभु की भक्ति में रम जाता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्तों के ऊपर किसी भी संकट का साया नहीं आने देता।

मनुष्य ईश्वर को यहाँ वहाँ तलाश करता है, परंतु वो इस बात को नहीं जानता कि प्रभु उनके अंदर ही हैं। मन को शुद्ध, विकारों से रहित रखें तो अपने अंदर ही इष्ट को खोज पाएंगे।

और प्रभु की सच्ची भक्ति अगर करना चाहते हैं और ईश्वर को पाना चाहते हैं तो केवल इतना करना है कि प्रभु के बनाए सभी जीवों से प्रेम कीजिए, सभी के लिए दया दृष्टि रखिए और जब भी अपने इष्ट को याद करें तो अपने मन को पवित्र रखिए। इसी प्रकार से आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

सुमंत्र से राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहन और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे वर्षा जल का सदुपयोग कैसे करें इसके बारे में। और भाइयों, जहाँ तक बात आ जाए है कि भाई जो बरसात का पानी है वो एक बहुत अच्छा पानी माना जा है, और उसके बाद यदि नंबर आवे है तो वो नहर के पानी का आवे है। और जो बरसात का पानी है वो कई तरह से हमारी जो ज़मीन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इतना शुद्ध पानी वो है, और जो बूंदें आकाश से परे हैं वो अपने साथ जो नाइट्रोजन है उसको गोड़ के और ज़मीन पे आवे हैं। और भैया देखो, बरसात किसी भी समय हुआ है तो जितनी हमारी वनस्पति है वो बिल्कुल खिलखिली हुई हमने महसूस हुआ है, उसमें चाहे हम पौधों की बात करें, फलदार वृक्षों की बात करें, हमारी खेती की बात करें, तो उसमें भाइयों ये चीज़ ज़रूरी हो जाए कि भाई हम उसका जो जल का संरक्षण है वो किस तरीके से करें। एक तो भाइयों हमने जहाँ पे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं कि भाई जहाँ पे हमारी सिंचाई के साधन कम हैं, तो उस जगह पे मान लो हम ड्रिपिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो इस समय पे हम कोई भी तालाब है या कोई भी बावड़ी है उसको भर लें, और भरने के बाद फिर हम उसको पूरे साल तक यानी कि जिस समय तक अगली बरसात ना हो उस समय तक उससे जो ड्रिपिंग सिस्टम है या जो फुहारा पद्धति है उससे भी हम उससे सिंचाई कर सकते हैं। एक तो इसमें ये फ़ायदा होगा। बाकी जो बरसात का पानी है वो बहुत अच्छा पानी वो है, और उसको हम जितना भी स्टोर कर लेंगे, जितना भी हम उसको सुरक्षित अच्छे जगह पर रख लेंगे, वो आगे आने वाले समय में बहुत हमारा काम आएगा। और जो बरसात का पानी है वो एक ऐसा समय वो है कि जो बरसात का मौसम में कि भाई जो हमारा जो चोवा है वो थोड़ा है इस समय पर ऊपर आवे है, क्योंकि पूरे समय में पूरे साल भर हम देखे हैं कि भाई हम जो नीचे से पानी का दोहन वो करते रहे हैं, और इस समय पर आकर जो चोवा है जो वाटर लेवल है वो थोड़ा है ऊपर आवे है, और उसी के कारण हमारे जो बोरंग हैं जो ट्यूबवेल हैं वो पूरे के पूरे साल तक काम करें, और वो जब संभव है भाई जो जल का हम सदुपयोग करेंगे इस बात में। और बहुत सी बात ऐसी हैं कि भाई जो वर्षा का पानी है उसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में इसमें हमने बहुत काफ़ी कुछ सहूलियत होगी, और उसमें जो भी हमारे किसान भाई हैं कोई भी खेती है उसको हम

0: उसके जो डोल है या जो मेड हैं उनको इतने मजबूत कर दें कि वह जो बरसात का पानी है वो दूसरे उसमें ना जावे और उतरे नहीं, क्योंकि जितना भी पानी हमारी ज़मीन के अंदर रहा होगा वो आगे आने वाले समय में हमारी ज़मीन के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा होगा। जितना भी ज़मीन में जो पानी है वो नीचे रिसकर नीचे जाएगा, वो उतनी ही ज़मीन के जो ऊपर जो खराब की वह जो नमक है उसको नीचे ले जाएंगे और हमारी ज़मीन का जो उपजाऊ शक्ति है, जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि जो अब मान लो हम जय ही बरसात का मौसम हो है उस समय पर जब हम पानी का अपनी मेड़बंदी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में जो हमारे खेत हैं वो हमने बहुत अच्छी जो जम फसल है उसकी पैदावार देंगे। और ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास मान लो नमी तो रही जा है लेकिन जहाँ पे ये कहा जा रेई है या रण है उस जगह पे हम छोटे छोटे जो क्यारे हैं वो बना लें और उसके अंदर जितना भी कोशिश हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे हम जितना भी वो पानी को इकट्ठा कर लें और उस पानी को इकट्ठा करके जब हम देखेंगे भाई जो हमारी ज़मीन है उसका जो स्वास्थ्य है वो जब भी ठीक रहा होगा भाई उसके अंदर जो पानी है उसके ऊपर जैसे काई जमे है या फिर वो बरसात का पानी जमे है तो उससे जो ज़मीन की तासीर है क्योंकि जिस तरह की तासीर है उससे उसमें बदलाव हुआ होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि की बातें, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् संबंधानाम् उन्नतिः सह विश्वासानाम् प्राथमिकतानाम् भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरम् कृतवन्तौ।
3: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो कार्डो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक वार्ता। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातः 7:15 पर विविध कार्यक्रम में मरुभूमि व सूखे से निपटने के उपाय विषय पर विज्ञान वार्ता प्रसारित होगी। वार्ताकार होंगे श्री नवीश कटारिया।

प्रातः 7:25 पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे और शाम 5:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार के साथ बातचीत का विषय होगा बाजरे की उन्नत किस्में व काश्त।

दिन में 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि वानिकी विषय पर चर्चा की जाएगी। शाम 7 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में बच्चों को स्वस्थ रखने में माता पिता की भूमिका विषय पर बातचीत होगी।

दिन में 12:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम, और प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया प्रसारित होगा शाम 5:45 पर।

रात्रि 8:25 पर श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत, प्रातः 9 बजे और शाम 7:45 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दिन में 1:10 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत रात्रि 10:30 पर प्रसारित होगा।

रात्रि 9:15 पर होगा कार्यक्रम एक फिल्म से। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर, और प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगबीर सिंह बलंबिया व साथी। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं विज्ञान वार्ता। विषय है मरुभूमि व सूखे से निपटने के उपाय। वार्ताकार हैं श्री नवीश कटारिया।

0: माफ कीजिएगा श्रोताओं, विज्ञान वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं मरुभूमि व सूखे से निपटने के उपाय विषय पर बातचीत श्री नवीश कटारिया से।
1: श्रोताओं, आज बात करेंगे बढ़ती हुई सूखी भूमि व मरुस्थलीकरण से हम किस प्रकार निपट सकते हैं, और इस विषय पर आज बात करने के लिए स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर नवीश कटारिया जी। आप जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से आए हैं और वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान विभाग में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
2: नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत
1: जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सूखी भूमि और मरुस्थलीकरण, इन दोनों को आसान भाषा में समझाएं हमें।
2: सूखी भूमि, अगर हम आसान भाषा में बात करें, सूखी भूमि जिसमें पानी नहीं है, जो बंजर है, जिसमें हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, जिसमें पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस भूमि को हम सूखी भूमि बोलते हैं
1: जी। और मरुस्थलीकरण,
2: मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो उपजाऊ भूमि है, जिसमें पेड़ पौधे लगते हैं, जो सामान्य भूमि है, वो भूमि भी एक तरह से शुष्क भूमि में, बंजर भूमि में बदल रही है, उसको हम मरुस्थलीकरण बोलते हैं
1: जी।
2: और उसमें भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है प्ले
1: जी।
2: करते हैं।
1: तो आप कह रहे हैं कि सूखी भूमि का अक्षेत्र थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो सूखी भूमि धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो एक मरुस्थल में परिवर्तित होता जाता है और उसका अक्षेत्र बढ़ता जाता है जी। तो क्या सूखी भूमि और बंजर भूमि दोनों में अंतर होता है?
2: बंजर भूमि और सूखी भूमि, बंजर भूमि तो वो होती है, एक तरह से ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है बंजर भूमि में सूखी भूमि में। बंजर भूमि वो होती है जिसमें हम कोई भी फसल नहीं लगा सकते
1: जी,
2: और जो फसल के लिए उपयुक्त नहीं है
1: जी,
2: उसको हम बंजर भूमि बोलते
1: कह सकते हैं जी,
2: कह सकते हैं
1: बिल्कुल।
2: और सूखी भूमि भी जिसमें पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं, उसमें पानी नहीं है पर्याप्त, जो फसल को एक तरह से सहारा दे, उसको उगने में सहारा दे, तो उसको हम सूखी भूमि कहते हैं।
1: मरुस्थलीकरण की बात आपने की है, क्या मरुस्थल एक विशेष जगह पर ही हो सकता है या ये मरुस्थल किसी भी जगह पे, उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र की, पठारीय क्षेत्र की, तटीय क्षेत्र की बात करें, कहीं भी हो सकता है?
2: मरुस्थलीकरण किसी भी जगह हो सकता है, जो नेचुरल कारण हैं और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
1: अच्छा,
2: और इसमें जो जैसे हम बात करते हैं थार डेजर्ट की बात करते हैं, जो अफ्रीका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, वहाँ पे भी हो सकता है, और जहाँ पे ठंडी जगह रहती हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी मरुस्थलीकरण, उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, वहाँ
1: अच्छा,
2: पे भी मरुस्थलीकरण हो सकता है
1: जी। ये
2: दोनों
1: कहीं
2: जगह,
1: भी हो सकती है प्रक्रिया,
2: कहीं भी हो सकता है
1: जी। तो जहाँ तक प्राकृतिक कारणों की बात करें, उसके बारे में बताइए, क्या कारण होते हैं प्राकृतिक?
2: प्राकृतिक कारण, एक तो जो प्राकृतिक कारण की बात करें, जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो हैं, जलवायु परिवर्तन है और अत्यधिक जो पशुओं की चराई है ये, और इसमें जो भूमि कटाव है, ये सारे के सारे कारण एक तरह से मरुस्थलीकरण, जो भूमि को, सामान्य भूमि को मरुस्थलीकरण की तरफ लेके जाते हैं
1: जी। बिल्कुल, सामान्य भूमि मरुस्थल में बढ़ती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। अब एक एक करके समझाएं, जब पेड़ों की कटाई हो रही है उससे मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ता है?
2: जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई की वजह से जो पोषक तत्व हैं, जो भूमि में पोषक तत्व हैं, जो कृषि को, फसलों को एक तरह से उगने में महत्वपूर्ण रहते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं
1: जी।
2: और जो पेड़ पौधे हैं वो एक तरह से जलवायु चक्कर, जल चक्कर में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, और साथ ही वर्षा को लाने में भी रोल प्ले करते हैं, और एक तरह से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं
1: जी।
2: तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती हैं, और उपजाऊ बनी रहती है मिट्टी तो वो मरुस्थलीकरण की तरफ नहीं जाती, वो सूखेपन की तरफ नहीं जाती
1: जी।
2: वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा पेड़ों की वजह से ही होती है, और किसी भी भूमि पे वर्षा हो रही है तो उसको पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है, जल मिल रहा है तो वो फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त है
1: जी। डॉक्टर नवीस जी, क्योंकि आपने पेड़ की बात की है, तो जब वन क्षेत्र होगा और वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र जिसको इसको सिस्टम बोलते हैं वो डेवलप होता है। वहाँ पे पेड़ खूब मात्रा में होते हैं, वन क्षेत्र होता है और वहाँ पे पक्षी भी होते हैं, और वो पक्षी जब इधर उधर जाते हैं अपनी बीट करते हैं, वहाँ पे बीज जो होते हैं अनेक वनस्पतियों के, अनेक पेड़ पौधों के, वो बीज बिखेरते हैं, तो उससे वन क्षेत्र बढ़ता है और मरुस्थलीकरण घटता है। लेकिन इसके साथ साथ में जब उसी वन क्षेत्र में हम कृषि की बात करते हैं, वहाँ पे कृषि होने लग जाती है मानवीय हस्तक्षेप से, और वो कृषि ऐसी होती है कि जिसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हम वापस उसी प्रक्रिया में नहीं फंस गए कि मरुस्थलीकरण बढ़ा दे रहे हैं?
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनको हटाकर वहाँ पे हम कृषि भूमि में उसको बदल रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने लिए अनाज तो पैदा कर रहे हैं
1: जी,
2: पर जो पेड़ पौधे हैं जो जल चक्कर में और एक तरह से भूमि की उपजाऊपन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, वो भी एक तरह से घटते जा रहे हैं। और वो घटेंगे और कृषि भूमि बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो एक तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो

0: मिट्टी को बांध के रखते हैं, और
1: जी
0: मिट्टी को बांध के रखते हैं तो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक तरह से मिट्टी में ही रहते हैं, और जो भूमि कटाव है वो कम होता है। भूमि कटाव कम होगा तो वो जो मिट्टी है वो एक तरह से उपजाऊ भूमि बनी रहेगी।
1: जी
0: तो
1: और
0: जो
1: इसके साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे जीव ऐसे होते हैं वो फिर आगे चल के जो डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया उसको भी बढ़ाते हैं आगे,
0: उसको भी बढ़ाते हैं और
1: जिससे
0: उसकी वजह
1: ज़मीन
0: से
1: और उपजाऊ बनती
0: और
1: है।
0: उपजाऊ बनती है।
1: जी तो जब जल की बात करें, क्योंकि जल दोहन भी प्राकृतिक जल स्रोतों से बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो वो भी क्या सूखी भूमि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक है?
0: बिल्कुल है, जो जल दोहन हो रहा है उसकी वजह से जल संकट की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जल दोहन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है,
1: जी
0: और नीचे जाता जा रहा है तो जो हमारी फसलों को और मिट्टी को एक पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है,
1: जी
0: और जीव जंतुओं को भी नहीं मिल पा रहा है। एक
1: जी
0: तरह से वहाँ पे जो भूमि फसल के लिए उपयुक्त थी वो सूखेपन में कन्वर्ट हो रही है,
1: अच्छा
0: और सूखेपन की वजह से फिर वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण में बदल रही है,
1: हाँ
0: और जो जल संकट है वो भी बढ़ता जा रहा है। जल संकट की वजह से जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनको भी पानी नहीं मिल पा रहा है, और फसलों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है, और
1: जी
0: फिर एक तरह से सूखे में बदलती जा रही है।
1: इसके साथ साथ में कई बार जब हम मानवीय हस्तक्षेप की बात करते हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं, जहाँ पर सूखी भूमि आसपास में होती है, मरुस्थल होता है उसके आसपास में, जो जिसको हम नखलिस्तान बोलते हैं, हरी भरी ज़मीन होती है, या फिर पहाड़ होते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसमें हम या तो कोई इंडस्ट्री लगा लेंगे, या फिर माइनिंग का काम कर लेंगे, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या गतिविधि करेंगे कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये भी क्या मरुस्थलीकरण को धीरे धीरे फिर बढ़ाने का ही काम करेंगे?
0: बिल्कुल बढ़ाने का काम करेंगे। जो शहरी विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग धंधे जो चल रहे हैं वो किस भूमि पर हैं? वो उपजाऊ भूमि पर ही लग रहे हैं,
1: जी
0: और उपजाऊ भूमि पर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे हम कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे, वहाँ
1: जी
0: पे उसको हम एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे, और एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे भूमि अपनी जो उपजाऊपन है वो खोती जा रही है,
1: जी
0: और उसके खोने से वो एक तरह से मरुस्थल में भी कन्वर्ट हो। साथ
1: जी
0: ही वहाँ से जो उद्योग हैं और शहरी विकास है उसकी वजह से जो वहाँ से वेस्ट निकल रहा है, और जो वहाँ से पोल्यूशन जो गैसेस निकल रही हैं
1: हाँ
0: और गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, और जो दूषित पानी निकल रहा है वो भी उसी भूमि पर डाला जा रहा है, और उसकी वजह से वो भूमि एक तरह से उपजाऊपन खोती जा रही है। वो सारे कारण जो हैं भूमि को सूखेपन की तरफ और मरुस्थलीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं।
1: अब इनसे निपटे कैसे?
0: इनसे निपटें तो एक तरह से हमें जो पेड़ों की जो
1: कटाई
0: कटाई
1: वो
0: है उनको
1: रोकनी
0: रोकना
1: है।
0: पड़ेगा। उद्योग धंधों के लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो उपजाऊ ना हो,
1: हाँ
0: जो पहले से ही सूखेपन में। कई बार ऐसा होता है कि हम उद्योग धंधों को ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे बहुत हरा भरा
1: हाँ
0: एक तरह से जंगल होता है,
1: हाँ
0: वहाँ पे लगा देते हैं, और उसकी वजह से वो जंगल भी बर्बाद हो जाता है, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान होता है, और उसकी वजह से वो एक पूरा का पूरा एरिया एक तरह से सूखेपन में कन्वर्ट हो जाता है। हम उसको उद्योग धंधों को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे पहले से ही ज़मीन खाली हो, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ ना हो, वहाँ पे लगा सकते हैं।
1: बल्कि वहाँ पर हम लगा के उद्योग धंधे अपने, और वहाँ के आसपास के क्षेत्र में काम करके उसको वापस फिर हम हरा भरा कर सकते
0: हरा
1: हैं।
0: भरा कर सकते हैं।
1: जी क्योंकि वहाँ पर
0: और
1: संसाधन मौजूद हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जी
0: और मैं एक और चीज़ कहूँगा, ये किसानों के लिए है। आजकल किसान जितनी उनके पास भूमि होती है उस सब पे ही वो कृषि योग्य बनाने की कोशिश करते हैं,
1: अच्छा
0: और उसकी वजह से अगर किसी के कृषि भूमि में कोई पेड़ है, वो पेड़ की वजह से उसके नीचे कोई फसल नहीं हो रही तो उसको भी वो काट देते हैं।
1: अच्छा
0: कृषि भूमि में भी पेड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो वर्षा लाने में बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उसके नीचे जो छांव होती है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में जो एक तरह से आप गोबर खाद डालते हैं, दूसरी खाद डालते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के उसमें से न्यूट्रिएंट जो है निकालते हैं और वो मिट्टी में डाल देते हैं,
1: पोषक तत्व जितने
0: पोषक
1: होते हैं वो
0: तत्व,
1: मिट्टी के
0: और
1: साथ
0: वो
1: मिल
0: पोषक
1: जाते
0: तत्व
1: हैं।
0: आपकी जो मिट्टी के लिए हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी हैं,
1: जी
0: और वो एक तरह से मिट्टी को बचा के रख

0: सकते हैं।
1: जी,
0: तो ये कृषि
1: और
0: पद्धति भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है मरुस्थलीकरण को रोकने में।
1: पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार जो संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे अरावली क्षेत्र है या फिर और पहाड़ी क्षेत्र है, पठारीय क्षेत्र है, वहाँ पर माइनिंग हो रही है, जिसको हम खनन बोलते हैं। क्या खनन की प्रक्रिया होने से धीरे धीरे ये जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है, बल्कि विकट रूप धारण कर सकती होगी?
0: विकट रूप बिल्कुल धारण कर सकती है। अगर हम बात करें माइनिंग की,
1: हाँ
0: माइनिंग कहाँ होती है? माइनिंग या तो सरफेस के ऊपर होगी, सरफेस के ऊपर ही अगर वहाँ पे कोई पेड़ पौधे लगे हैं उनको हटाना पड़ेगा, हटा के उसके बाद उसको माइनिंग में माइनिंग करते हैं। जब
1: जी
0: माइनिंग कर दी, वहाँ से हमने कोई पेड़ पौधे है, कोई जंगल है वो हटा दिया, उस जंगल को बनने में, एक पौधे को तैयार होने में, पेड़ बनने में कम से कम 20 से 30 साल लग जाते हैं।
1: जी
0: अगर हमने उसको माइनिंग में कर दिया और उसके बाद हमने सोचा कि वो वर्षा में दोबारा सहयोग करेंगे या हम उसको दोबारा एक तरह से जंगल में बदलेंगे, तो उसके लिए हमें 20-30 साल चाहिए।
1: जी
0: और वो 20-30 सालों में वो कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, वो भी बहुत एक तरह से कठिन है, जो अगर हम उसको
1: प्रक्रिया को दोबारा से
0: दोबारा से
1: दोहराएं।
0: करें। तो
1: जी
0: माइनिंग एक तरह से बहुत ज़्यादा उसी इस माइनिंग के साथ ही वहाँ की जो ग्राउंड वाटर है वो भी दूषित होता है, वहाँ की जो हवा है वो भी दूषित होती है,
1: हाँ
0: और एक भूमि कटाव उसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। भूमि कटाव ही एक ऐसा है जो मरुस्थलीकरण की तरफ ले जाता है भूमि को।
1: जी डॉक्टर नवीश, क्या जब हम माइनिंग कर रहे हैं, जहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी एक पर्वत श्रृंखला है, वो एक पूरी ज़मीन है, जब वो ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी माइनिंग करते करते, क्योंकि वो ज़मीन अपने आप में जो मरुस्थलीकरण है उसका अवरोधक है अन्य जगह तक जाने में, तो वो ही ख़त्म हो जाएगी भाई, अरावली का पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, तो आगे तो मरुस्थलीकरण अपने आप बढ़ेगा फिर
0: अपने
1: वो।
0: आप बढ़ेगा, क्योंकि अरावली का जो एक बेल्ट है
1: हाँ
0: वही राजस्थान से, गुजरात से जो धूल भरी आंधियाँ हैं उनको हरियाणा में, दिल्ली में, इधर मध्य प्रदेश में आने से रोकती हैं ये पूरी
1: जी
0: की पूरी बेल्ट।
1: हाँ
0: अगर यही हटा दी जाएगी तो एक तरह से पूरा का पूरा जो आपका नॉर्थ रीजन है,
1: हाँ
0: जो
1: उत्तर
0: हम
1: भारत है।
0: उत्तर भारत है, वो पूरा मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ सकता है।
1: जी
0: तो सरकार को भी और इसमें हमें भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए कि हमें इस पर्वत श्रृंखला को बचा के रखना।
1: जब हमारे सहयोग की बात आती है तो यहीं पे चुनौतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या, क्या जागरूकता की चुनौती है?
0: जागरूकता की बहुत बड़ी चुनौती है, लोग सुनते तो हैं बट उसको फॉलो नहीं करते। उसमें एक तरह से उसको, जैसे पेड़ लगाने की बात आती है, पेड़ लगा तो देते हैं,
1: हाँ
0: पेड़ लगा
1: देखभाल
0: के
1: नहीं करते।
0: उसकी उसको ध्यान रखना, उसकी केयर करना, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है।
1: जी
0: तो वो बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जागरूकता के साथ साथ उनको, जैसे पेड़ हम लगा रहे हैं तो उनका ध्यान रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: और इसके साथ साथ में चुनौतियाँ पॉलिसी मैपिंग में भी आती हैं, कि पॉलिसी को हम कहाँ पे मैप कर रहे हैं, कैसे उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इको सेंसिटिव जोन में हम कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देते हैं जो कि समस्या को और बढ़ा देता है,
0: और
1: ये
0: बढ़ा
1: भी
0: देता है,
1: चुनौतीपूर्ण हो जाता
0: ये
1: है
0: भी
1: कई बार।
0: चुनौतीपूर्ण है कि हमारी पॉलिसी है, हमारी जो पर्यावरण सुरक्षित रखने की है, भूमि को बचा के रखने की जो हमारी पॉलिसी है, इनमें इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसी इकोसिस्टम को बचा के रखने का।
1: जी
0: तो अगर पॉलिसी हमारी अच्छी होंगी तो हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा, और
1: जी
0: हमारी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी, वो सूखे की तरफ नहीं बढ़ेगी और वो भी एक तरह से हरी भरी रहेगी।
1: जब किसान भाइयों की बात करते तो क्या प्राकृतिक खेती इसमें कुछ काम कर सकती है?
0: प्राकृतिक खेती बिल्कुल काम कर सकती है। प्राकृतिक खेती में हम जो इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, एक तरह से हमारे आसपास की चीज़ें हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हम पशु पालते हैं तो उनके लिए हम चारा लेके आते हैं खेतों से और वो चारा खाते हैं, उन्हीं का जो वेस्ट है वही एक तरह से न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है, पोषक तत्वों से भरपूर रहता है,
1: जी
0: वही हम अपने कृषि भूमि में डालते हैं और वही पोषक तत्व फसलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल करते हैं और जो इकोसिस्टम को वो भी बना के रखते हैं। उसकी बजाय हम जो केमिकल डालते हैं उन केमिकल से भी हम फसल को बचाते हैं, और
1: जी
0: जो फसल हम तैयार करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। तो हम प्राकृतिक खेती के जरिए जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया, सूखी भूमि होने की प्रक्रिया है, उसको रोकने में मदद भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर नवीश जी, आप अपनी तरफ से और कुछ ऐसा उपाय व्यक्ति विशेष जो कर सके वो बताना चाहें मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए?
0: मरुस्थलीकरण को रोकने के

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो क्या कभी अपने बचपन का समय याद आता है, जब बच्चों को बिना किसी चिंता के, बिना कल की फिक्र किए केवल जीवन का आनंद लेते देखते हैं। बचपन को जीवन का सबसे खूबसूरत दौर माना गया है क्योंकि बचपन जिम्मेदारी और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। इस उम्र में मासूमियत, बेफिक्री और वर्तमान में जीने की कला होती है जो बड़े होते होते खत्म होने लगती है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा भी ये बात कही गई है कि बचपन में न भविष्य की चिंता होती है और ना ही व्यस्क जीवन के भारी दबाव। इस उम्र में दोस्ती और प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, अगर झगड़ा हो भी जाए तो थोड़ी देर में ही सुलझ जाता है। बचपन में दिल साफ होता है जिसमें न कोई छल होता है न कपट होता है। हर छोटी बात पर दिल खोल कर हंसते हैं और बच्चे इस जिद पूरी न होने पर खुलकर रो भी लेते हैं। बच्चों के लिए हर चीज़ आश्चर्य से भरी होती है, वे बिना किसी डर के नई चीज़ें सीखते हैं और कल्पना की अपनी अलग ही दुनिया में खुश रहते हैं। कितना खूबसूरत होता है बचपन। बचपन की बातें करते करते एक कविता याद आ रही है जो मैं श्रोताओं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था, गम की जुबान न होती थी न जख्मों का पैमाना था। रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था, क्यों हम इतने बड़े हुए, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था।

श्रोताओं, जीवन को बेहतर बनाना है। बिना किसी बीमारी के हम ये जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी ज़िंदगी है उसमें हम स्वस्थ रहें, शरीर स्वस्थ रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करने होते हैं। रोज़ाना के अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय खुद के लिए चुरा लिया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। थोड़ा सा घूमना, पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। योग, व्यायाम, इन सभी चीज़ों का हमारी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोज़ाना पैदल चलना बिना किसी उपकरण या खर्च के सेहत को दुरुस्त रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। रोज़ाना सिर्फ 30 से 40 मिनट तेज़ कदमों से टहलने से वज़न नियंत्रण में रहता है, दिल की सेहत सुधरती है, ब्लड शुगर स्थिर होती है और तनाव कम होता है। तेज़ गति से चलने पर कैलोरी बर्न होती है। 30 मिनट की वॉक लगभग 200 कैलोरी खत्म कर सकती है, जिससे मोटापा दूर होता है। ये रक्त संचार में सुधार करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय को मजबूत बनाती है। रोज़ाना टहलने से जोड़ों की मजबूती मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, खाने के बाद थोड़ा टहलने से भोजन आसानी से पचता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पैदल चलने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है जो मूड को अच्छा बनाता है, चिंता को कम करता है और मानसिक शांति देता है। और नियमित रूप से अगर आप पैदल चलते हैं, सैर करते हैं थोड़ी देर, तो ऐसा करने से रात को नींद अच्छी आती है और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। शुरुआत में आप पैदल चलने का समय यानी घूमने का समय कम रख सकते हैं, धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं। हमेशा सप्ताह में कम से कम 150 मिनट तक मध्यम एरोबिक गतिविधि पूरी करने का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने लिए आप एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, जिससे आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडो को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,004

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक। जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

खतरी सजा ठीक करा चोराए बीच दराया करे पूत की खतरी सैने पिंडे कसी ते बुल वाया करे पूत की खतरी शनिवार ने आग छोर में लाया करे तेरा पूत की खातरी रोटी जाते छड़े बीच।

छुटवा कने महल हवेली अस्थल थाना क्यों देस है राजा आली पोशाक छोटा के।

इसी के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोक संगीत में आज कलाकार थे जगबीर सिंह बलंबिया और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मेरे यार की शादी है फिल्म से। गीत को गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक, संदेश भोसले और जसपिंदर नरूला ने। जावेद अख्तर का लिखा गीत है और जीत प्रीतम का संगीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: और आइए अब सुनते हैं हद कर दी आपने फिल्म का ये गीत।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं चित्रा और के देव कोहली का लिखा गीत है और अनु मलिक का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं समीर का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है तेरे नाम फिल्म से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमको दीवाना कर गए, आइए सुनते हैं इस फिल्म का शीर्षक गीत। गीत को गाया है सोनू निगम और तुलसी कुमार ने।

शिकारी फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। गीत को गाया है कुमार सानू ने, गीत रचना समीर की है और इसकी धुन तैयार की है आदेश श्रीवास्तव ने।

दिल का रिश्ता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू। समीर का लिखा गीत था और नदीम श्रवण का संगीत। और अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म से। गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10 बजने को हैं। कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोल पीकर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट के त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read

1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है प्रातः की 10:10 और 15 सेकंड। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा संपन्न होती है एफएम बैंड 103.5 MHz पर मुंबई से। विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं। और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

0: श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो, तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे, तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी, बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया।

0: जी डॉक्टर साहब।
1: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
0: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
0: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
0: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
0: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओह जॉन्सी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने

0: के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
0: कुछ। थैंक गॉड,
3: अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
4: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
4: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
4: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
4: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
4: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
4: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
4: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
4: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
4: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
4: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
4: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
4: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
4: हाँ जॉन्सी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
4: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
4: हाँ,
2: मास्टरपीस।
4: हाँ,
2: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
1: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
0: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम

0: के दिल्ली केंद्र से और 1:05 पर होंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेपेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉ. जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉ. रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भय हो रहे हैं।
1: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योग का प्रस्ताव जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने भारत की इस पहल को खुले दिल से स्वागत किया। जब ये प्रस्ताव यूएनओ के अंदर आया तो 170 देशों ने इसका खुलकर के समर्थन किया। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था। हम सबको गर्व है कि पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
0: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल जींद जिले के नरवाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लगभग 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले जन स्वास्थ्य विभाग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनहित एवं विकास कार्यों की प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प को धरातल पर उतारा गया है। अब इस जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल स्तरीय आधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और उन्नत उपकरणों से सुसज्जित यह प्रयोगशाला क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रयोगशाला में स्वच्छ कार्य वातावरण, आधुनिक सुरक्षा प्रबंध तथा कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इससे जल गुणवत्ता की जांच अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा सकेगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पलवल में आयुष विभाग द्वारा आगरा चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम तक योग मैराथन का आयोजन किया गया। SDM भूपेंद्र सिंह ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में स्काउट्स एवं गाइड सहित विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्ला ने कहा कि योग मैराथन का मकसद लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है।
2: दरअसल का उद्देश्य यही है कि जागरूकता हमारे सबके अंदर आए, हम स्वस्थ रहें, हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा और सारे अपने काम ठीक से कर पाएंगे। सरकार का यही उद्देश्य है कि सारे लोग इसमें शामिल होकर के एक प्रेरणा लें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंबाला में भी आयुष विभाग द्वारा सुबह योग मैराथन का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजय राजपाल ने बताया कि योग मैराथन सुबह 6 बजे पुलिस लाइन ग्राउंड से शुरू हुई। रैली जेल मार्ग, हर्बल पार्क और पुलिस चौकी के सामने से होकर पुनर पुलिस लाइन मैदान में सम्पन्न हुई। मैराथन में अंबाला के SDM तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और करीब 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। चंडीगढ़ के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में शामिल सेक्टर 19C की मार्केट के कारोबारियों ने बाजार में बेहतर निगरानी के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हाईटेक CCTV कैमरे लगाने, नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने तथा व्यस्त कारोबारी समय में अतिरिक्त पुलिस बल और PCR तैनात करने की मांग की है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा कारोबारियों के साथ की गई बैठक के दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी कई मुद्दों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा गया। व्यापारियों के अनुसार बाजार के पीछे स्थित क्षेत्र और सार्वजनिक शौचालय के आसपास नियमित निगरानी की मांग की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यहां कुछ लोग शराब के सेवन और जुए जैसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिससे बाजार का माहौल प्रभावित होता है तथा ग्राहकों और परिवारों के आने जाने में असुविधा होती है। मार्केट कमेटी ने कब्जों और अवैध रेड़ी फड़ी विक्रेताओं की समस्या भी उठाई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में दो अनजाने फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दुनियादारी फिल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रभा ठाकुर ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

दुनियादारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे प्रभा ठाकुर ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ों में आइए अब आपको सुनवाते हैं उधार का सिंदूर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है राजेश रोशन का।

0: अभी आप सुन रहे थे उधार का सिंदूर फिल्म का गीत। इसे गाया था आशा भोसले और मुकेश ने। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था राजेश रोशन का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में RD बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। झूठा कहीं का फिल्म का नाम है और गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना झूठा कहीं का इस फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने और संगीत था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जमाने को दिखाना है इस फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया ये गीत है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एक बार फिर से आरडी बर्मन।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में ज़माने को दिखाना है इस फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत था आर डी बर्मन का। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आइए अब आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे जाने अनजाने फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, यकीन फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना यकीन फ़िल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे थे शंकर जयकिशन ने, माफ़ कीजिएगा, इस गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में उजाला फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे ये वादा रहा फिल्म का गीत। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें थीं। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेज़ी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 2:15 पर आप सुनेंगे समाचार हिंदी में। समाचार रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NEET-UG retest, message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's seventh consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent Ankit Kumar, who is joining us from Avignon. He will bring us the latest updates on the G7 developments. Ankit? Many G7 economies are facing slower growth and demographic challenges. How would you say the partnership with India would help unlock new opportunities in manufacturing, innovation and services?
1: Yes, Valsa. You rightly pointed out about the shifting global dynamics. See, when we look at the G7 economies today, many are actually grappling with aging populations and acute labor shortages. While partnering with India offers a direct and dynamic solution to them, India brings a massive, young, and highly skilled talent pool that is increasingly integrating into global tech and services sector.
0: Right.
1: But the partnership goes far beyond just human capital. If you see newly adopted global tech and services, newly adopted India-France Innovation Roadmap 2030, the G7 bloc no longer views India merely as the vast consumer market. Instead, India has emerged as a critical, trusted partner for building resilient global supply chain and advancing manufacturing. Valsa.
0: Right, and as artificial intelligence becomes central to economic growth, how can India's DPI ecosystem serve as a foundation for responsible and inclusive AI development?
1: Absolutely, Valsa. See, The convergence of digital public infrastructure and artificial intelligence is truly the next frontier of inclusive development. You know, unlike closed proprietary platforms, India built its digital architecture like Aadhaar and UPI as a public good, designing it for population scale and inclusion right from day one. When you integrate AI into this framework, India's interoperable DPI provides the diverse, high-quality and consent-based data sets that require to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate adversaries to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good. Yes, Balsa.
0: Right, Anki, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
2: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
0: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the youth parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said the government is committed to building next-generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the ministry on a proposed Middle East-India deep water pipeline. In a statement, the ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
3: The Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: The Special Investigation Team, SIT, constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public, and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
4: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Evian, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India stormed into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
6: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलावों की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफ़ी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
5: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
6: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब
7: जब आप इसमें एआई को डोज जोड़ देती हैं तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति
5: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
8: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
5: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
10: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
5: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाई देखे हैं कि अपना जो मौसम की अगर बात करी जाए तो भाई कल भी देखने में आया था और आज भी सुबह से बरसात का मौसम है। और कल तो बहुत ही जगह पर भाई किसान भैया चाहे खेती की बात हम करें हैं चाहे भाई पशुधन की बात करें हैं या फिर अपना दिनचर्या में ये देखे हैं कि भाई अपने घर में भी काफ़ी उजाड़ देखने में आया था क्योंकि बहुत सी तेज हवा गरज चमक बूंदाबांदी और बिल्कुल ही तेज आंधी अंधड़ जिस नाम कह दी हैं तो इतनी तेज रफ्तार में भाई बहुत से घर में अपने कितने सूरज अपनी जो सोलर प्लेट है उनमें नुकसान देखने में आया है कि खेतम जो किसान भैया ने पंप लगा रखे थे भाई अपनी सोलर सिस्टम लगवा रखा था वहाँ भी नुकसान देखने में आया है। बहुत से पेड़ पौधे भारी जो रुख अपने आकर दे भरे भरे वह भी काफ़ी नुकसान में थे। तो मौसम में बिल्कुल परिवर्तनशील है भाई दो चार दिन के दौरान भी अपना मौसम खराब खुशनुमा बताया गया है और बूंदाबांदी बताई गई है। तो इसलिए भाई देखा जा है कि अपनी जो भी दिनचर्या के काम है खेती बाड़ी से संबंधित कह ले हैं हम या फिर आगे की जो तैयारी है वहाँ हम ही कह ले हैं क्योंकि वे जो अपना टाइम है भाई बिल्कुल ही कितने सिंचित इलाका है कितने बरिया धरती है भाई कितना अपना टिब्बासार धरती है उस हिसाब से किसान भाई अपने खेती बाड़ी के भाई काम कर रहे हैं कितने खाली खेत हैं तो भाई खाली खेत में तो दो ही तीन अपने इबकाले काम थे क्योंकि गर्मी थोड़ी लंबी भी चल रही थी लेकिन इब थोड़ा बहुत दिना तो भाई मौसम में परिवर्तनशील है थोड़ा हा तो इस हिसाब से भाई कितने गहरी जुताई का काम था कितने किसान भैया ने भाई कहीं कहीं अपनी हरी खाद का जो महत्व है वो भी अपने लिया था भाई। और खाली खेत में भाई यो भी देखा हाँ कि अपनी जो जिस नाम लेजर लेवलर गोड़ी कहते हैं तो वहाँ भी खेत एक सरकरण का काम चला था लेकिन बात जब धान बेल्ट की आ जाए तो अपना कुरुक्षेत्र करनाल अम्बाला पानीपत जो भी भाई पर्याप्त इलाके हैं धान की बेल्ट के वहाँ किसान भाइयों ने भाई क्योंकि जो अपने समरसीबल हैं वहाँ पे पानी बिल्कुल पर्याप्त है धान की बेल्ट है तो भाई अपने लगाने की तकी शुरू भी कर दी हैं भैया ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई देखेंगे एक अगला महीने में अपना कुछ नहरी के साथ जड़े किसान भैया का भाई चौवा वाली धरती है टुबला के पानी ठीक ठाक हैं तो भाई उड़े भी आगे चाल की किसान भैया ने पनीरी तैयार कर रखी है फिर धान का टाइम आओगा तो हम लगाई भी होगी फिर तो इसी हिसाब से चाहे वो बात हम खेती बाड़ी में दिनचर्या की भाई कि खाली खेत हम थोड़ा मिट्टी पानी के कर जांच हम करवा ले हैं तो सबसे बढ़िया रहे हैं क्योंकि मिट्टी पानी की जाँच में हमने ये मालूम हो जाए है कि भाई जो अपनी दिनचर्या की खेती बाड़ी से संबंधित जो भी कार रोजगार हैं उसमें भाई चाहे कितने जिंक सुपरफास्फेट कितने भाई मैगनीज लोहा तो 16-17 प्रकार के जो अपने पोषक तत्व ज़मीन में पाए जाएँ किसी चीज़ की कमी हो तो भाई अपना के करें हैं किसान भाई देख हम देख भाई एक दूसरे ने देख लें आजकल ठेका बटाई की खेती इतनी हो रही है महंगवाड़ा बहुत हो रहा है तो भाई अनसमझित जो किसान भाई खेती में खर्चा ला बैठे हैं फिर उसमें दिक्कत आओ है फिर कह दें हैं कि भाई खेती थोड़ा घाटा का सौदा रही लेकिन आज जो आधुनिक युग है वैज्ञानिक का युग है तकनीक इतनी हमारे पास इतनी है हर रोज़ साधन नए ईजाद होने लग रहे हैं साल दर साल भाई कोई मशीनरी है नए तकनीक है वान दी जाएँ तो इन हम सोचें समझें एक योजना के तहत खेती बाड़ी में चाहे वो लेखा जोखा की बात आओ है या फिर अपने साधन संपन्न की बात आओ है या फिर हम जो पेस्टिसाइड है कोई अपना उत्तम बीज हैं उत्तम कृषि क्रियाएँ हैं उनमें हम खर्चा अनसमझित नहीं लावा बिल्कुल उसके लक्षण हम पहचानें कोई कार रोजगार हम सहायक धंधा उसके साथ जरूर अपनाएं कोई कार रोजगार हम कर रहे हैं बशर्ते भाई वो एकदम तो हम उसके मसीदा हाथ नहीं डालने थोड़ी बहुत कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई प्रशिक्षण वगैरह हम लेके जब इसमें शुरुआत करें और थोड़ा टाइम के अनुसार अगर खेती बाड़ी में हम एक सार जो अपनी परंपरागत खेती थी उससे थोड़ा बहुत अटके नहीं करेंगे तो वो मुनाफा नहीं मिल पाओगा हमने जो हम चाण लग रहे हैं खेती बाड़ी से थोड़ा इसके अलग हटके हम सोचें थोड़ा अलग हटके इसके हम विचार बनाएं बहुत सी नई तकनीक के साथ आज खेती बाड़ी किसान भाई कर रहे हैं कोई साइलेज का काम अपना रहा, कोई ये का काम अपना रहा है, कोई भाई बागवानी का काम अपना रहा है, कोई अपना पोली हाउस का काम चल रहा है, कितने न कितने साथ में पशुधन का, डेयरी फार्मिंग का, मुर्गी पालन का, बहुत से ऐसे धंधे हैं। बारहमासी मशरूम है किसान भाई आजकल, उसकी ट्रेनिंग लेके उसका भी काम शुरू कर रहे हैं। तो कोई ना कोई सहायक धंधा किसान भाई के पास अगर नहीं होगा तो आज थोड़ा हा तकनीकी युग है, महंगाई का युग है, इसमें थोड़ा हा खेती बाड़ी में खर्चा किसान भाई ना समझित नहीं ला बैठे, थोड़ा सोच समझ की बसरते कोई प्रशिक्षण के दौरान इसमें हम काम शुरू करें। और छोटे छोटे इशात अगर हम काम शुरू करें हैं तो आजकल जो खेती बाड़ी है उसके जो वेस्टेज बच गया है किसान भाई उससे ही बहुत सा काम चला रहे हैं। चाहे वो हम केचुआ पालन की अगर बात करें हैं तो इसमें बहुत से प्रकार के केचुए आ जाए हैं भाई, उसका भी हम वर्मी कंपोस्ट खाद उससे तैयार कर सके हैं, खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सके हैं, बागवानी में इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल हम कर सके हैं। तो ये छोटे छोटे जो बिल्कुल पैतरे हैं या हमने तकनीकी रूप से अपना के चल लेंगे तो खेती बाड़ी में बढ़िया लाभ हो पाओगा। इस नाम सोचें समझें, किसी भाई जो पहले कर रहे हैं उनका दौर है, प्रशिक्षण हम ले हुए हैं बैठे हैं पुल, उसकी थोड़ी छोटी बारीकियां ना पकड़ा हम, फिर जाके खेती बाड़ी तो मुनाफा किसान भाई ठीक ले पाओगा। इसी तरीके से आज बात करेंगे भाई कृषि जो वानिकी है, क्योंकि खेती बाड़ी तो हम दिनचर्या तो कर दे आ रहे हैं भाई अपना लगभग साल दर साल, जो कृषि वानिकी है भाई जड़े भी अपना ज़मीन खाली रह जाओ है भाई, अपनी नाली हैं डोड़े हैं या फिर प्रॉपर तरीके से हम कोई बाग लगाऊँ हैं, तो कृषि वानिकी तो हम अधिक लाभ किस तरह लेवा, थोड़ी बहुत बात इसके बारे में भी करेंगे, लेकिन समय हो रहा गीत रागनी का, तो भाई रागनी सुनवाऊँगे सुखबीर सिंह और साथियों की गाई हुई।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

तो ये सुनी भैया ने सुखबीर सिंह की गाई रागनी, एक रागनी और सुनवाऊंगे। लेकिन भाई अपना जो खेती बाड़ी में जिक्र चल रहा था, कृषि वानिकी ते लाभ, क्योंकि भाई अपनी जो खेती बाड़ी है वो तो देखो दिनचर्या में चाली जाओ है, और अपने जो परंपरागत फसलें हैं लागी जाओ हैं, कोई भाई नई फसलें लगाओ है, तो इस हिसाब से ये देखे हैं कि जो भी अपने खाली मेड़ हैं, डोले हैं, नाली खोले हैं, भाई जड़े भी हमारे पास जगह है, तो उस नाम में एक सही तरीके थे, चाहे वो हम सफ़ेदा लगाओ हैं, आधुनिक चाहे पॉपुलर लगाओ हैं, बिल्कुल जो आजकल की हाइब्रिड वेरायटी आ रही है उसमें चाहे शीशम है, कीकर है, नीम है, बहुत से ऐसे पेड़ आ रहे हैं जो हमने अलग से एक अतिरिक्त आमदनी किसान भाई ने दे दी है, जल्दी तैयार हो जाए हैं, सफ़ेदा है अपना 4-5 साल में, 6 साल में भाई थोड़ी ठीक खबात किसान भाई कर ले है तो बिकने के लायक हो जाए, फिर दोबारा उस दाम पेडी की फसल ले सके हैं। पॉपुलर है, शीशम है, तो बहुत सी ऐसी जो हमने अलग आमदनी दिए हुए हैं, बहुत से ऐसे पेड़ हैं। और ये देखे हैं कि कृषि वानिकी तो भाई अधिकतम लाभ के लिए भाई खेती में डाप है उन्नत पेड़ जैसे भाई सफ़ेदा, पॉपुलर, शीशम, बांस, ये हम लगा सके हैं। और मुख्य फसलों के साथ साथ इन पेड़ आते हैं हम अलगते हैं, एक चाहे वो इमारती लकड़ी की बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं, और चारा पर्याप्त काफ़ी इसमें हो जाए है, जिससे हमारी जो अलग से किसान भाई ने एक आमदनी मिल पाओ है। कृषि वानिकी तो भाई ये देखे हैं कि जो आय में लाभ बढ़ाना अपना मुख्य तथ्य रवे है। हमने ये देखे हैं कि जो भी हम अलग से आमदनी पैदा करें हैं, चाहे भाई वो सही पेड़ा का चुनाव हमारे पास होना चाहिए, हमने किस तरीके से डोले हैं, मेड हैं, उनका उपयोग हमने अच्छी तरीके से बांध की, या फिर हम देसी भी बंधवा की उस तक पैदावार ले हुए, सही मेड़ा का चुनाव तो भाई अपनी मिट्टी है और जलवायु के अनुसार भाई कम छायादार पेड़ हमने चुनने हैं ताकि वो जल्दी बढ़वार ले सकें। और उसके बीच में जो हम इंटरक्रॉप जिस नाम कहते हैं, बीच बीच में जो फसलीकरण हम कह दी हैं, उसने भाई अलग से थोड़े है, अगर हम कोई सब्जी फसल इसमें ले रही हाँ तो भाई उसने ठीक तरीके से अपना एक हवा है, पानी है, धूप है, वो ठीक मिल सके। और जो अपना सफ़ेदा पॉपुलर 5-7 साल में अच्छी लकड़ी हमने दे दी है, बिकने के लिए तैयार हो गया है। और मेढा का उपयोग भाई खेतों के बीच बीच में पेड़ लगाने की बजाय भाई उन्हें केवल मेढा पाम ने लगानी है, जिस नाम बॉर्डर प्लांटनिंग कह दी है, ताकि मुख्य फसल ने पर्याप्त धूप और हवा मिलती रहे और ताकि कोई दिक्कत ना आवे। और फसल और पशुपालन का भाई मिश्रण की अगर बात करें हाँ, तो हम सबसे बढ़िया रहे हो इसमें, पेड़ा के बीच में खाली जगह में हम दलहनी फसलें जैसे जो नाइट्रोजन अपनी बढ़ा दी हैं ज़मीन में, और या फिर पशुओं के लिए भाई

चारा इसमें हम जो है उगा सकें हैं। इस तरह भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वह भी काफ़ी हद तक बढ़े है और आमदनी का एक स्रोत किसान भाई के पास एक अलग तरह आ गया है। सरकारी अनुदान की अगर बात करिए जाए तो भाई कृषि वानिकी ने बढ़ावा देने के लिए भाई राज्य सरकारें जैसे हरियाणा राज्य है, किसाना ने पौध पर सब्सिडी भी दिए हुए है और आर्थिक सहायता प्रदान भी काफ़ी हो गया है भाई इसमें। और आप कृषि बागवानी जो विभाग है उसकी वेबसाइट पर जाके भी हम जानकारी ले सकते हैं या फिर कृषि विश्वविद्यालय में हम जाके जानकारी ले सकते हैं। बड़े नज़दीकी जो अपने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हरेक में लगभग ये देखे हैं कि कृषि बागवानी विभाग है उस तक संपर्क करें, चाहे हमने कोई बाग लगवाना है या फिर किसी तरीके के हमने पेड़ पौधे से सहायता लेनी है। फसला के साथ साथ भाई पेड़ा का संयोजन जो आपने बदलते मौसम के भाई जोखिम ने जलवायु ने परिवर्तन तय भी काफ़ी हद तक बचाव है, पर्यावरण ने शुद्धता मिला है इसमें और आपकी लकड़ी और खाद्य पदार्थ के रूप में भी आय के कई किसान भाई के स्रोत जो है इसमें बढ़ जाए हैं। तो बहुत से इसके फायदे हैं भाई कृषि वानिकी हम जरूर अपनाओ, खेती बाड़ी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं अलग तो हमने लगाने चाहिए। बहुत से भाई तो इसमें पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं, चाहे वो चंदन का काम इसमें हम लगा दें, सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन है, एक अलग से आमदनी के लिए किसान भाई बहुत सा अगर सर प्रयास इसमें कर रहे हैं उन भैया तो हम सीखें ट्रेनिंग लेवें जब जाके इसका काम थोड़ा बहुत शुरुआत करें। तो चलो भाई टाइम फेर हो गया एक रागनी का, चलते भैया रागनी को सुनवाएंगे सुखबीर सिंह और साथिया की।

0: मेरी बात पड़ी
1: रजाई,
0: देखे खुद तबीते नहीं सर यत शात घड़ी
1: रजाई,
0: दोनों कुण ब्यागी

अभी आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.4 सेंटीमीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार
1: और आप सभी को आपके साथी हर्ष का भी नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में साथियों हम आज बात करेंगे एक दिवस के बारे में जो आज हम मना रहे हैं, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। और साथियों यह हर वर्ष 16 जून यानी कि आज के दिन मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन लाखों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देना जो अपने परिवारों की सहायता के लिए अपने देश या घर से दूर रहकर काम और धन भेजते हैं। और साथियों प्रेषण यानी कि रेमिटेंसेस वह धनराशि है जो प्रवासी लोग अपने परिवारों को भेजते हैं और यह धन परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति इसकी ही सहायता से बेहतर होती है।
0: जी बिल्कुल हर्ष, हर साल 16 जून यानी कि आज के दिन दुनिया भर में परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को समर्पित है जो अपने देश और परिवार से दूर रहकर कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर भेजते हैं जिसे प्रेषण या रेमिटेंस कहा जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जैसा कि हमारी दोस्त हर्ष ने भी आप सभी को बताया कि दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगारों के योगदान को पहचानना, उनके साहस को सलाम करना और उनके द्वारा भेजे गए धन से दुनिया भर में करीब 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों का जीवन स्तर में सुधार होता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रवासियों द्वारा भेजा गया पैसा सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं है बल्कि यह उनके पीछे छूटे परिवारों के लिए प्यार, उम्मीद और सुरक्षा का एक जरिया है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजा गया धन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन का काम करता है। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें प्रवासियों के प्रति संवेदनाशील होने का संदेश देता है। यह दिन सरकारों और वित्तीय संस्थानों को प्रेरित करता है कि वे विदेशों से पैसे भेजने की लागत यानी ट्रांसफ़र फीस को कम करें ताकि इन श्रमिकों की मेहनत की पूरी कमाई उनके परिवार तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच सके। प्रवासियों का यह योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। और साथियों प्रवासी कामगार अपने परिवार के सुगत भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। उनका योगदान न केवल उनके परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था जैसा कि हमारी साथी अंजलि ने बताया उसको भी मजबूत करता है। और साथियों अंत में यदि उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है जो अपने परिवारों के बेहतर जीवन के लिए दूर रहकर भी उनका सहारा बनते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल हर्ष, इसी के साथ सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत फिल्म शोर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म शोर से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार थे संतोष आनंद, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: क्यों ना अंजलि हमारे कार्यक्रम में साथियों को अगला गीत सुनवा दें, जो लिया गया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। बिल्कुल, और आवाज़ें हैं फरहान सईद और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं फरहान सईद।

और साथियों अभी आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से ये गीत, आवाज़ें थी फरहान सईद और श्रेया घोषाल की, गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे फरहान सईद। और चलिए साथियों अब समय हो गया है कार्यक्रम को समाप्त करने का, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ प्राशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर और इस समय जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं उसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया। तो आदित्य जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में बात करना चाहूंगा। शुरू से शुरू करते हैं हमेशा, तो बताइए थोड़ा सा कि आपका बचपन कैसा था, कहां पर आप पले बड़े?
3: सर, मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से ही रहने वाला हूँ और वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मेरी पढ़ाई शिशु मंदिर में शुरुआत हुई है, उसके बाद मैंने जब स्पोर्ट्स ज्वाइन किया क्रिकेट में, तो मैंने KDMA से खेलना शुरू किया और वहीं पे मैंने शिक्षा प्राप्त की। KDMA इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे।
2: बचपन कैसा था आपका?
3: बचपन बहुत ही अच्छा था, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे था। बस हाँ, थोड़ा सा ये था कि पढ़ाई का प्रेशर कम था क्योंकि हम शुरुआत से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा था क्रिकेट, इसलिए मुझे पढ़ाई का प्रेशर कम रहता था, खेलने को बहुत मिलता था।
2: ठीक है, तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट थे और घर वालों को सपोर्ट था?
3: बहुत ज्यादा सपोर्ट था।
2: परिवार में कौन कौन है और कैसा सा माहौल था घर का, थोड़ा सा वो और बताइए।
3: सर, मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मेरी माता जी हैं, अभी मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और दादी हैं, तीन लोग हैं फैमिली में। और माहौल ठीक है, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है वैसे ही माहौल है।
2: तो इसका मतलब ये है कि काफी ओपन रहा होगा आपके घर का माहौल, काफी एक्सेप्टिंग रहा होगा।
3: जी जी जी।
2: तो इसीलिए शायद अपना जो पैशन है स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, वो आप परस्यू कर पाए।
3: नहीं, उसकी वजह एक और थी कि पापा को भी स्पोर्ट्स पसंद था, तो इसलिए और हमको सपोर्ट मिला उसमें खेलने के लिए, तो सबसे प्लस पॉइंट ये भी रहा।
2: तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं आदित्य जी, इसका मेन उद्देश्य है कि कई बार ना हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बचपन में हो जाती हैं या कुछ चीजों को नजरअंदाज हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अगर कोई भी ऐसी गलती है जो एक इंसान से होती है जो बाकी श्रोतागण अवॉइड कर सके, तो वो अपने पहले ट्रांसप्लांट के पहले के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ऐसी कोई गलती थी जो आपको याद आ रही हो या कुछ ऐसा हुआ हो आपके एंड पे?
3: जी जी सर, एक्चुअली क्या था कि मैंने अंडर 16 स्टेट भी खेला है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है पाली मृगा ट्रॉफी में जी, और मेरे जो इंडिया प्लेयर हैं इस समय जैसे कुलदीप दत्त यादव, अंकित राजपूत, ये सब मेरे बैचमेट हैं और साथ के ही प्लेयर हैं। तो उस समय क्या था कि सर, मैं सुबह मॉर्निंग से प्रैक्टिस के लिए निकलते थे और शाम को ही पहुँचते थे, तो बाहर का खाना पीना थोड़ा ज़्यादा हो गया। जब कोई जैसे शरीर में इन्फेक्शन लगा और स्पोर्ट्स में इतना लिप्त थे कि उस पर ध्यान भी नहीं दिया कि किसी तरह का कोई शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि छोटे थे उतना ध्यान नहीं दिया। और हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इतने ज़्यादा डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं थे कि पहले टेस्ट कराएं बाद में दवाइयाँ दें, इस वजह से ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा।
2: तो चलिए बात करते हैं आपके पहले ट्रांसप्लांट, कब की ये बात है और क्या सिम्टम आने शुरू हुए और कितने टाइम तक सिम्टम्स रहे?
3: सर, एक्चुअली मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए 2009 में, मेरे पैर में सूजन आई और मेरे हाथ के नीचे सूजन आना चालू हुआ। मुझे पता नहीं लगा ये किस चीज का, एक्चुअली मेरे फैमिली में भी किसी को भी ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तो स्टेरॉइड थी शायद उसमें, तो उन्होंने दी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ बेटा थोड़ी बहुत सूजन आती है, उसके बाद वो सूजन बढ़ती ही चली गई। बाद में जब टेस्ट कराया तो उसमें मेरे प्रोटीन लीकेज था। तो 2010-2011 में मेरा इलाज चलता रहा SGPGI लखनऊ से, वहाँ पे प्रोटीन मतलब लीकेज धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2011 में मतलब ये नौबत आ गई कि डायलिसिस पे मुझे आना पड़ा। एक्चुअली मेरे माता और पिता दोनों का मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, तो मेरा पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ स्वैप हुआ 2013 में। उसके बाद 2016 में उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई, वो रिजेक्शन हो गया, फिर से मैं डायलिसिस पे आ गई।
2: आप कह रहे हैं 2011 में आपकी बॉडी ने प्रॉब्लम सिम्टम आपको देने शुरू कर दिए थे?
3: प्रॉब्लम के सिम्टम्स आ गए तो 2010 की स्टार्टिंग में ही, 11 में तो सर उसने मतलब डायलिसिस वाला रूप ले लिया था।
2: 2010 की स्टार्टिंग में सिम्टम आने शुरू हो गए और आपने इंस्टेंटली डॉक्टर को दिखाया था?
3: हाँ हाँ सर, दिखाया था, लेकिन प्रोटीन लीकेज बहुत था, झाग बहुत था यूरिन में, यूरिन का कलर चेंज हो गया था उस वक्त।
2: तो इसकी वजह बताइए क्यों हो रहा है सब?
3: उस समय मतलब बायोप्सी के लिए बोला सर ने, बायोप्सी करी, उसके बाद सर ने सीधे बोला कि CKD है, कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस इतना बताया कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। बट यूरिन प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम, फिर उन्होंने ये भी बताया कि कई बच्चों के बचपन से भी होती है।
2: और आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और आप खेलों की तरफ

0: अपना रुझान रखते थे, तो
1: जी
0: इसलिए चीजों को जाने दिया। आपका ये कब पता लगा कि किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है?
1: सर मतलब डॉक्टर पीजीआई के जो डॉक्टर अमित गुप्ता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में बता दिया था ये दिन आने वाला है, ये थोड़ा समय एक दो साल तक हम लोग रोक पाएंगे इसे। वो चीज़ें थी 2011 में डायलिसिस का बिल्कुल मतलब स्टार्ट हो गया था, क्रैकनिंग, तो मेरे डॉक्टर जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने भी बोल दिया था, बट मुझे पता नहीं था कि डायलिसिस कराना जरूरी, नहीं तो आपकी जान चली ही जाएगी। और मेरे पास किडनी का जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं थी, ना मदर का ब्लड ग्रुप सेम था, और हम लोग को स्वैब के बारे में या कैडबरी या इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था कानपुर में।
0: तो कितने टाइम तक आप उसको खींचते गए बिना डायलिसिस के?
1: सर मैं अप्रोक्सीमेटली मैंने उसको खींचा है 6 से 8 महीने।
0: 6 से 8 महीने इतना बड़ा रिस्क आपने लिया कि डायलिसिस नहीं कराया?
1: मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा पहला डायलिसिस हुआ है 32 क्रैकनिंग पे, 32।
0: और ये आपको कराना पड़ा एम्स में आके?
1: एम्स में एक्चुअली सर को दिखाया डॉक्टर डी भौमिक को, उन्होंने बोला कि बेटा हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं उन्हीं की होती है, उन्होंने बोला कि आप जाके जल्दी से जल्दी इसकी डायलिसिस कराइए। तो मैंने उसके बाद वो डायलिसिस करा ही ली थी, मान लीजिए बाहर जाके अपने कानपुर में लीलावड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर निर्भय कुमार के अंडर में कराई थी।
0: और ये डायलिसिस का सिलसिला कितना टाइम चला?
1: सर वो अप्रोक्सीमेटली चला 2.5 साल।
0: 2.5 साल यानी कि 2011 से 13 के मिड तक समझे?
1: हाँ हाँ।
0: और ट्रांसप्लांट कब हुआ? 2013 में पहला। और ये कैसे हुआ, थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताइए।
1: सर एक्चुअली ब्लड मुझे ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो स्वैब के बारे में मुझे बताया, पीजीआई भी जाते रहते थे हम लोग बीच में दिखाने के लिए, पीजीआई में ही एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि अपना रजिस्ट्रेशन करा दो अगर आपके फादर या मदर किडनी देना चाहते हैं, तो एक स्वैब भी होता है उस समय 2011 में। तो उन्होंने बोला कि, तो मेरा फोर्टिस हॉस्पिटल से एक डोनर थे गोरखपुर के, उनसे मतलब बातचीत हुई, मिल गया, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने मुझे दिया था, हस्बैंड वाइफ थे वो, और मेरे पापा ने उनके हस्बैंड को किडनी दी थी, वो भी लास्ट कोरोना काल में नहीं रहे, बट उनकी किडनी बहुत अच्छी काम कर रही थी, उनको मतलब उनका ट्रांसप्लांट पूरा 10 साल अप्रोक्सीमेटली चला ही, 9 साल कोई दिक्कत नहीं उन लोगों
0: को। उसके बाद का जीवन कैसा था पहले ट्रांसप्लांट के बाद?
1: सर बहुत ही नॉर्मल था, मैंने अंपायरिंग की परीक्षा पास की क्रिकेट में, उसके बाद क्योंकि मैंने पढ़ा भी क्रिकेट ही है, खेला भी क्रिकेट है, तो उसके बाद खेल तो सकता नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा अंदर ताकत नहीं रह गया था, फ्रेंडली मैचेस और वो सब अलग है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के पावर नहीं बची थी। मैंने अंपायरिंग की परीक्षा प्राप्त की, उसके पास की, उसके बाद थोड़ी बहुत अंपायरिंग और क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट नॉर्मल तरीके से। फिर 2016 में मुझे फिर से प्रॉब्लम आई, और वो इस बार क्या हुआ कि इस बार जो प्रॉब्लम आई, मैं 40 में डॉक्टर सिंगल के अंडर में था, समझ लीजिए कि इस बार हम लोगों ने उस तरह की गलतियां नहीं की जो पहली बार में की थी, इस बार मैंने 7 में ही पहली डायलिसिस करा ली।
0: 2013 से 16 के बीच में आपका जीवन ठीक चल रहा था?
1: बिल्कुल नॉर्मल था, बस वही बताया ना सर कि 15-16 के बीच में थोड़ा बहुत क्रैकनिंग अप हुआ, पुआ पुआ बढ़ता गया, और वो प्रोटीन से झाग आने लगा मतलब।
0: और ये कब आना शुरू हुआ था?
1: ये वही मान के चलिए कि 15-16 के बीच।
0: 15-16 के बीच में तो आपको समझ में आ गया था कि कुछ प्रॉब्लम है?
1: हाँ, बायोप्सी भी सर ने किया था, सर ने बताया।
0: और उस टाइम पर आपको बॉडी में और कोई सिम्टम नहीं था?
1: नहीं नहीं सर, नॉर्मल मतलब बॉडी नॉर्मल ही थी बिल्कुल, क्योंकि सूजन वूजन कहीं कुछ था नहीं, यूरिन पास हो रहा था।
0: थोड़ा सा आपके पेरेंट्स के बारे में भी जानना चाहूंगा, ट्रांसप्लांट के बाद उनका जीवन कैसा है, कि किडनी दोनों की क्योंकि दे चुके हैं दोनों?
1: सर मेरे पापा तो डेली मतलब ये आप मान के चलिए कि 12 घंटे काम करते हैं कम से कम, और मम्मी ग्रैंडी हैं, कोई वैसे तो घर पे है भी नहीं, वैसे पूरा घर का काम है हर चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो लोग कर रहे हैं। पिछले पापा का तो ट्रांसप्लांट किडनी दिए हो गया करीब मेरे हिसाब से 11-12 साल, और माता जी को भी 7 साल, इसी तरह की वैसी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वही 7 दिन उन्होंने मेडिसिन खाई थी जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, कि आप कोई मेडिसिन नहीं किसी तरह की, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं।
0: और आपकी लाइफ कितनी नॉर्मल है उसके बाद?
1: सर मैं तो सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीता हूं। मैंने तो बता तो रहा हूं कि मैं पहले टेंशन लेता भी था, मैंने तो अब तो बिल्कुल ही छोड़ रखा, क्योंकि अपने हाथ में जो चीज है नहीं उस चीज के बारे में क्या सोच, टाइम के दवा खा लेते हैं और उसके बाद अपना काम करने में लग जाते हैं।
0: तो आप क्या कह सकते हैं ये बात कि जो आप दूसरी पारी खेल रहे हैं ये बहुत शानदार है और बहुत मजा आ रहा है, और शायद कहीं ना कहीं आपका नजरिया जीवन को लेकर बदला है?
1: सर बिल्कुल मैं इस बात को कह सकता हूँ, और मैं इस चीज को महसूस भी कर सकता हूँ, और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करें, डरे नहीं। ट्रांसप्लांट आपको जीवन देता है, आपको डर नहीं देता है। लोगों को ये लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, जैसे अब हम ही है सर, आपको मैं बताता हूँ, मेरा पहला ट्रांसप्लांट सिर्फ 3 साल चला, कि आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बोला कि 1600 लोग नहीं रहे डायलिसिस पे जो थे, तो उसमें कम से कम 800 लोग उन 3 साल में भी नहीं रहे होंगे, एटलीस्ट 3 साल तो उसने मुझे लंबी उम्र दी थी। एक दिन भी अगर ट्रांसप्लांट आपका चल रहा है ना तो सक्सेसफुली है, ठीक है, सबकी लाइफ है। मैं 50 साल अभी मैं सर एक्चुअली ऑर्गन इंडिया की टीम से जब जुड़ा हूँ, टीम से कई जगह के इवेंट्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसमें देखता हूँ किसी की किडनी 25 साल से चल रही, किसी की 30 साल से, किसी की 20 साल से, सब अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिव है, तो सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आपके भाग्य में क्या लिखा है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आपको अपना कर्म करना चाहिए।
0: कोई भी ऐसी चीज आदित्य जी जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके मन में हो, आपके जहन में हो, तो प्लीज आप बिल्कुल फ्री फील करिए।
1: सर मेरे मन में बस इतना है, जैसे मैं ही हूँ ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, लोगों के मन में आपने बोला कि ट्रांसप्लांट नहीं कराते, उसकी वजह ये आती है, लोगों को ये लगता है कि डायलिसिस में ही पैसा जा रहा है और जो ट्रांसप्लांट मेडिसिन है वो भी बहुत महंगा है। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं जैसे ज्यादा एजुकेशन नहीं है, कोई जैसे मेरी छोटे में ही खराब हो गई किडनी, तो हम उतना पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो मेडिसिन बहुत महंगी होती है या कुछ होता है, इस वजह से लोग और घबराते हैं। तो पहले तो मेडिसिन सस्ती होनी चाहिए, सरकार से ये गुहार है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई एनजीओ ऐसा जो किसी पेशेंट की कुछ हेल्प मत करे, सिर्फ मेडिसिन की ही हेल्प कर दे, या उनको इस तरह का कोई रोजगार दे, मतलब जो उनके लेवल का हो या काम ले ले तो मेडिसिन दे दे, किसी को फ्री मत दे, बट क्योंकि मेडिसिन हम लोग की लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी कुछ लोग डरते हैं।
0: मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने मन की बात यहाँ पर रखी। और कोई चीज अगर ऐसी जो आप कहना चाहते हो बाकी लोगों से ऑर्गन डोनेशन को लेकर?
1: सर मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है, आपके डोनेशन से किसी की लाइफ बच सकती है। आप कोई भी ऑर्गन डोनेट करते हैं वो एक नहीं बल्कि 5-5 लोगों को कभी कभी जीवन दे जाता है, तो आप प्लीज आगे बढ़िए, हम जैसे लोगों को जीवन को बढ़ाइए, हम जैसे लोगों के चेहरों पे खुशी लाइए। मैं नहीं, हजारों लाखों लोग आपके सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हैं, प्लीज हम सबको सपोर्ट करिए और हमारी लाइफ सेव करिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और अपने मन की इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने लोगों तक पहुंचाई। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इस शो से हम उम्मीद करते हैं, इस शो के थ्रू जो हम मूल्य या वैल्यूज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो हम पहुंचा पाए। उद्देश्य यही है कि जितना हो सकता है उतने ज्यादा लोगों को हम जागरूक करें और बताएं कि ये जो अंग दान है ये कितना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, और ना केवल बात होनी चाहिए बल्कि लोग उठ के सामने आए, प्लेटफॉर्म साइन करें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है आगे लोगों को बताएं, उनको जागरूक। अब इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार आदित्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ऑर्गन इंडिया ऐसे ढेर सारे शोज आपके लिए लेकर आता है, और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑर्गन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। नमस्कार, धन्यवाद,
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
3: दोस्तों अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया आकाशवाणी रोहतक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार होंगे। समाचार हम रिले कर रही हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। समय मिलाइए स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:05 और 11 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपको पहले बता दें आज के शेष कार्यक्रम। सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:10 से। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार से बातचीत आप सुन पाएंगे, बाजरे की उन्नत किस्में व काश्त। 7 ग्रामीण संसार कार्यक्रम होगा, बातचीत रहेगी बच्चों को स्वस्थ रखने में माता पिता की भूमिका। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:25 पर। फिल्म संगीत लेकर आएंगे रात्रि 7:45 पर। और मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 10:30 से। हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद सुना जा सकता है रात्रि 9:30 से। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सरकार के 12 वर्ष विषय पर सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में नक्सलवाद। वार्ताकार होंगे आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ, CRPF के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल रात्रि 11:10 से। हेडिंगली बर्गिंगम स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुना जा सकता है कल शाम 6:30 से। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। युवा संसार कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:30 जिसमें विशेष होगा करियर काउंसलिंग। हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर डॉक्टर दीपा मलिक से भेंटवार्ता का विषय होगा हृदय रोग कारण व उपचार। NCERT प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे 12:30 पर। एक अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ आप सुन पाएंगे 2:45 पर। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता एक किसान से आप सुन पाएंगे। खेत खलिहान कार्यक्रम होगा 2:30 पर। विषय चर्चा का रहेगा नए बागों की रूपरेखा तैयार करना। कृषि की बातें यह कार्यक्रम सुनिए 6:50 पर। चर्चा रहेगी तिल की काश्त, श्री रामचरित मानस गान 6:40 पर आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत मनभावन प्रातः 9:00 आपके अनुरोध पर फिल्म संगीत कार्यक्रम दिन में 1:10 पर। और लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा 6:30। कलाकार होंगे दिलबाग सिंह किराड़। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। और अब आपको दे दी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचना। ये सूचना मिली है थाना दुजाना जिला झज्जर से। इसके अनुसार शीला डॉटर ऑफ रामपाल सूचित करती हैं कि उनका भाई सुनील सन ऑफ रामपाल 30 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ, गोल चेहरा, कद 5 फुट 6 इंच है, उम्र 32 वर्ष है, पतला फुर्तीला शरीर है। कोई भी सूचना इस व्यक्ति के बारे में आप इन नंबरों पर दे सकते हैं 9354842422 एक अन्य नंबर है 9659797246। इसके अलावा प्रबंधक अफसर थाना दुजाना को भी आप सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के मुताबिक थाना पुरानी सब्जी मंडी जिला रोहतक से ये सूचना मिली है। इसके अनुसार कृतलाल पुत्र सूरत सदाय निवासी गांव लोहिया पोस्ट ऑफिस बहादुर तहसील गोगड़िया जिला मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल किराए पर हनुमान कॉलोनी में रहते हैं, सूचित करते हैं कि उनकी बेटी नीतू, जिसकी उम्र 13.5 साल है, घर से लापता है। कद 5 फुट है, दुबला पतला शरीर है। इसके बारे में कोई भी सूचना आप इस नंबर पर दें, 7082991116।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार ने नीट में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगाई और केंद्र सरकार ने गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
3: आज कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो NCR का एरिया है उस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बैठक में NCR के जो रीजन प्लान है 2041 उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
2: उन्होंने बताया कि बैठक में NCR के भविष्य के विकास, शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, संरचना और सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। बोर्ड के सभी सदस्य राज्य एक एक नए ग्रीनफील्ड शहर की विकास योजना भेजेंगे। नमो सिटी के नाम से विकसित होने वाले यह शहर आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर शहरी केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उन्होंने बताया,
3: पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए NCR कोर एरिया, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन तय हुई है और जो कोर एरिया है उसके अंदर तो पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का और उसके लिए परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है कि उसके अंदर हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाए।
2: हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को राज्य भर में योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने इस बार के योग दिवस समारोह को एक जन आंदोलन बनाने और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक के बाद डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि 18 मई से पूरे हरियाणा में योग गतिविधियां चल रही हैं और इनमें अब तक 20,36,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में आयोजित विभागीय योग कार्यक्रमों में भी 13,00,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। हरियाणा विधानसभा परिसर में आज सुबह 12:00 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायकों, योग आयोग के अध्यक्ष योगाचार्य डॉक्टर जयदीप आर्य, उपाध्यक्ष डॉक्टर रोशन लाल व हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत योग को पूरे विश्व ने अपनाया है और सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि योग मनुष्य को स्वस्थ ही नहीं तनाव मुक्त भी रखता है।
4: आज हर व्यक्ति, जो जिम्मेवार व्यक्ति है, जो दायित्ववान व्यक्ति है, उसके ऊपर काम का बोझ बहुत होता है और अन्य कई प्रकार के तनाव भी होते हैं, और खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कभी कभी वो बीच में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उठकर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो 5 मिनट के अंदर ही वो एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम पर आते हैं।
2: हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयुष विभाग द्वारा आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री ने खुद योग कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। आयुष मंत्रालय की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग घोषित की गई है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है, योग तन ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है।
5: आज 192 कंट्रीज में योग दिवस मनाया जाता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत गौरव की बात है। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, और जिस तरह से ये दुनिया चेंज हो रही है, सबको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, और बीपी शुगर तो हर तीसरे आदमी को है, तो उसका एकमात्र इलाज है योग। इससे आप फिट रहते हो मेंटली भी फिजिकली भी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि मन को शांत, विचारों को और जीवन को अनुशासित बनाने का माध्यम है।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के लिए रोहतक जिले में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 21 जून को यह परीक्षा दोपहर बाद 2 से 5:15 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने आज नीट के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। यह वाहन बिना रुके संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर एवं CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामक निगरानी की और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आज हिसार में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को आम जन तक पहुँचाया जा रहा है।
6: सरकार ने 12 साल में देश के गौरव को बढ़ाया। देश के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, खोई हुई जो आन बान और शान है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको रीगेन करना, और विकास के काम। दोनों से ही पता लगता है कि सरकार किस लेवल पर कैसा काम कर रही है। पिछले 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, विकास की बात करें, भारतवासी को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी माँ बहन हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, बैकवर्ड सेल के लोग हों, सबको बढ़ाने की बात, उनका सम्मान बढ़ाने की बात की है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और संरचना एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में रिकॉर्ड भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा विधानसभा परिसर और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
8: PLI है ना?
9: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: तो अपना महेंद्रगढ़ नारनौल का, जींद का, हिसार का, भिवानी का, ये भी सब रह के गम है। भाई नदियाँ का आसपास का जो एरिया है, चाहे ऊपर आ जाए और धान भी हो है, यानी कि एक एक गम सारी, मतलब तरह की धान की बात करा, कपास की करा, सारी फसल होने लग गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो रक्ष, अब बाजरे में शुरुआत में जिक्र करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में। और आजकल के है कि पहले नेपा देखे हैं भाई, फलाना बाजरा कितने मन लिखड़े है, सीधा
1: बिल्कुल
0: यो रहे, वही वरायटी,
1: बिल्कुल
0: स्वाद किसा है, प्रोटीन की मात्रा
1: ठीक बात
0: कितनी
1: है।
0: है, तो इसमें सारा जिक्र करेंगे। तो अब इसमें बताओ कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो अपने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी अनुमोदित हों, या फिर अलग से अगर भाई लेना चाहो तो कौन कौन सी किस्में।
1: अनिल भाई, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की जो प्रमुख किस्में हैं, सबसे पहले हमें उन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगा,
0: जी
1: क्योंकि आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है किसानों के हित में नई नई किस्में विकसित करता रहता है और भी नई नई तकनीकें किसानों को देता रहता है, जो कि किसानों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि लाभकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल जी,
1: तो उन्हीं किस्मों में सबसे पहली है हरियाणा हाइब्रिड बाजरा, यानी HHB के नाम से जो आती हैं किस्में, HHB 67 संशोधित
0: संशोधित।
1: संशोधित क्योंकि आपको पता है कि पहले HHB 67 के नाम से हमारी बहुत फेमस रही है किस्म, तो उसी की संशोधित रही है क्योंकि वो अब वो पुरानी हो चुकी है और
0: बिल्कुल
1: उसमें कुछ समस्याएं भी आने लगी थी।
0: जी डॉक्टर
1: तो
0: साहब,
1: सबसे पहली किस्म HHB 67 संशोधित, उसके बाद कुछ और अच्छी किस्में आई हुई हैं, HHB 197 हैं, HHB 234 है, HHB 272 हैं, HHB 299 और 311।
0: तो डॉक्टर साहब ये सारी हाइब्रिड हैं।
1: हाँ जी, इसके अलावा कुछ एक बिना हाइब्रिड वाले भी किस्में हैं, जैसे कि HC 10 है, HC 20 हैं, ये भी बड़ी अच्छी किस्में हैं हाइब्रिड, और जो दूसरी बिना हाइब्रिड वाली किस्में हैं, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हाइब्रिड की किस्में ईजाद की जाती हैं उसमें किसान भाई पैदावार तो बहुत अच्छी ले सकते हैं लेकिन
0: जी
1: उसका दोबारा बीज नहीं बना सकते।
0: जी डॉक्टर साहब, यानी कि एक बार जो बीज निपट जाए है, जो अपना घर पर आ गया,
1: हाँ जी
0: दोबारा अगर हमने वो लेना, जिस तरह गेहूँ का ले लें, सरसों का ले लें,
1: सर, बिल्कुल
0: तो इस तरह से उसका बीज की हिसाब किताब में उसने
1: हाइब्रिड का नहीं ले
0: नहीं
1: सकते
0: ले
1: आप। हाँ
0: सकते।
1: जी, उसके लिए HC 10 और HC 20 हैं,
0: HC 10
1: दस और HC 20।
0: 20 डॉक्टर साहब, इसमें उसने पैदावार की आप बात करें हाइब्रिड में, और तो इसमें कितनी पड़ जाए है, और जो बिना अपना भाई हाइब्रिड है, HC 10 का आपने बताया, 20 का आपने बताया, तो इसमें कितनी पैदावार है।
1: देखो, सबसे नंबर वाइज एक एक करके हम बात करेंगे। पहली किस्म जो मैंने बताई HHB 67 जो संशोधित है, उसके बारे में कुछ एक क्या क्या इन किस्मों की विशेषताएं इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहली बात, HHB 67 जो संशोधित है, ये हूबहू अपनी जो HHB 67 होती थी उसी की इम्प्रूव्ड वर्जन है।
0: यानी कि इसका जो दाना है वो बिल्कुल उसी का, मतलब संशोधन करके
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल,
0: किस्म निकाली गई है।
1: हाँ, ये एक संकर किस्म है, तो मैंने जैसे बताया आपको हाइब्रिड को ही संकर बोला जाता है।
0: जी
1: ये बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्निक है नई, उसके द्वारा इसको ईजाद किया गया था। और क्या समस्या थी कि 67 में जो है जोगिया रोग आने लग गया था, तो ये एक प्रतिरोधी इसके अंदर जीन डाला गया और फिर इसको तैयार किया गया, और इसके साथ साथ इसकी जो पैदावार है उससे ज़्यादा है, यानी कि लगभग 31 मण दाना प्रति एकड़ के हिसाब से और 90 मण जो है सूखा चारा आप ले सकते हैं।
0: यानी कि डॉक्टर साहब इसमें 12 क्विंटल के आसपास तो जो है अपना दाना आ जाएगा, और 36 एक मन के आसपास जो अपना पूड़ी फरडा कह दें, जिसने कड़वी बोलते हैं, वो
1: जी
0: इसमें सूखा
1: जी
0: चारा।
1: अनिल भाई,
0: जी
1: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है जोगिया रोग नहीं होता है, और वही हमारी जो 62 से 65 दिन के आसपास ये है तैयार हो जाती है ये किस्म, और इसमें छोटे छोटे बाल भी लगे हुए होते हैं।
0: मतलब सिरटे की बात करें
1: सिरटे
0: उसके
1: की
0: ऊपर।
1: बात करूँ, बिल्कुल,
0: जी
1: क्योंकि सिरटे में अगर बाल होंगे तो वो पक्षियों का नुकसान कम होगा।
0: बिल्कुल जी,
1: तो इसके अलावा हमारी जो अन्य किस्में हैं HHB 197 हैं, ये इसमें जो है वही पक्षियों के नुकसान से बचाव के लिए इसके अंदर थोड़े से लंबे बाल हैं और इससे पक्षियों का नुकसान जो है हमारा कम होगा। इसकी क्या खासियत है कि इसमें एक तो अच्छा फुटाव होगा, उसके साथ साथ जोगिया रोग की जो प्रतिरोगिता है उसके
0: जी
1: साथ साथ कंगियारी रोग भी इसमें नहीं आता है,
0: जी
1: और इसकी जो पैदावार है 67 जो इम्प्रूव्ड थी हमारी उससे भी थोड़ी ज़्यादा, बल्कि 35 मण के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से जो है दाना और 115 मण जो है सूखा चारा प्रति एकड़ के हिसाब से
0: जी
1: इसकी औसत पैदावार है। जहाँ तक पकाने की बात है कि ये लगभग 68 से 72 दिन जो है पकाव में ले लेता है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: अगली जो किस्म हमारी HHB 234 है, ये भी वही हमारी जो HHB 67 जो संशोधित है उसी के बराबर, यानी 31 मण दाना ले लेती है, दे देती है, और 65 जो हमारी जो 95 से 98 मन चारे की पैदावार देती है।
0: डॉक्टर साहब, इसकी चारे की पैदावार भी बहुत अच्छी है और ये तो मान के चलो भी 100 मन के आसपास भी लगभग पड़ता है, इसका पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और 65 से 68 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है
0: जी।
1: इसकी एक और खासियत है कि यह सूखे के भी रोधी है, मतलब सूखे को सहन शक्ति करने वाली है, सहनशील जो किस्में बोलते हैं।
0: यानी कि डॉक्टर साहब, जो अपने कुछ एरिया ऐसे हैं जो भाई बरसात पर निर्भर हैं, पानीपात के प्रबंधन कम है, तो उन जगह पर इस किस्म की ज़्यादा वरीयता रहेगी, क्योंकि आपने बताया ना भी सूखा भी इसमें सहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई, इसके अलावा जो हमारी HHB 272 है, ये भी किस्म 234 की तरह सूखे को सहन करने वाली है और इसकी पैदावार हमारी जितनी भी पिछली जो मैंने किस्में बताई उनसे कहीं अधिक, यानी 37 मण दाना देने के में सक्षम है और लगभग 90 मण जो है सूखा चारा दे देती है और 65 से 68 दिन में ये हमारी ये फसल तैयार हो जाती है
0: जी।
1: इसके साथ साथ ये किस्म सूखे के जैसे मैंने बताया उसके साथ साथ जोगिया रोग की भी प्रतिरोधी है।
0: यानी कि इसमें जो जोगिया रोग है और कुछ लगभग जो आपने किस्में बताई डॉक्टर साहब, जिसमें कंगियारी रोग है, जोगिया रोग है, इस तरह की जो बीमारी है उनके प्रति
1: बिल्कुल अनिल भाई, देखो जब भी कोई नई किस्म ईजाद की जाती है
0: जी,
1: उसका कारण ही यही होता है कि हमारी जो पुरानी किस्में हैं उनमें वो बीमारी आने लग जाती है, वो सहन शक्ति उनकी नहीं रहती, सहनशील नहीं रहती, प्रतिरोधकता जो है हमारी उन किस्मों की कम हो जाती है। तो जब भी नई किस्म ईजाद की जाती है तो वो जो है कोई भी जो ज़्यादा एरिया जिस बीमारी के तहत था उसकी प्रतिरोधी किस्म वो ईजाद की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: इसके अलावा अनिल भाई, दो हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ी अच्छी किस्में और ईजाद की हैं, HHB 299 और HHB 311। ये किस्में जो है बायो फोर्टिफाइड किस्म है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि इन किस्मों के अंदर जो है हमारा लो तत्व जो है इनमें हमारी जो आम बाजरे की जो किस्म होती थी उनसे कहीं अधिक है।
0: यानी कि डॉक्टर साहब, कणा कैस का अनाज की ताकत कैस कहें, वो इसमें मतलब जो है इसकी लो की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है और खाने में स्वादिष्ट रहेगा और स्वास्थ्यवर्धक, ये बताइए आपने किस्म है।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्यवर्धक, क्योंकि आज सबको पता है कि जो आज के दिन जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा जो जनसंख्या का जो है भाग जो है खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो एनीमिक है, यानी खून की कमी है। तो अगर वो महिलाएं या वो परिवार जो है अगर बाजरा खाता है तो अपने दिनचर्या में लगभग 2/3 जो है अपनी लौह तत्व की पूर्ति अकेले बाजरा से कर सकता है
0: जी।
1: और जब हम बायोफोर्टिफाइड किस्में अगर हम खाएंगे तो हमारी जो लौह की हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है।
0: और डॉक्टर साहब, इसमें फिर पैदावार की बात करें वो कितनी है?
1: अनिल भाई, पैदावार की भी मैं बात करूँ तो ये हमारी जो पिछली मैंने जितनी भी किस्में बताई है उन सबसे अधिक लगभग 40 मण दाना जो है हमारी जो दाना दे देती है और 100 से 105 मण सूखा चारा दे देती है।
0: यानी कि डॉक्टर साहब देखो, ये तो मान के चलो 16-17 क्विंटल के आसपास तो दाना हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। और बढ़िया, इसमें जो अपना चारा के रूप में भाई सूखा चारा पूड़ी फरड़ा जो भी है वो भी इसमें 100 मण के आसपास या 100 मण से ऊपर तक भी इसमें सूखा चारा मिल जाए। और दूसरा आपने बताया इसमें लो की जो मात्रा है वो ज्यादा है। डॉक्टर साहब, इस किस्म का नाम एक बार फिर किसान भाई ने बताया।
1: HHB हरियाणा हाईब्रिड बाजरा 299 और HHB 311।
0: HHB 311
1: ये बायोफर्टिफाइड किस्म है जैसे मैंने अभी आपको बताया और 80/82 दिन लेती है ये। थोड़ा सा दिन तो ज्यादा लेंगी ये हमारी जो आम तौर पे किस्में
0: वो 60/62
1: में होता है,
0: तो उसमें मान के चलो अब 20-21 दिन
1: और ज्यादा
0: है। तो इसने तो ये करें भाई, अपना टाइम पर अगर बिजाई कर देना तो बढ़िया रहे, ताकि फिर जो अगली फसल है सरसों की लेनी है और दूसरी फसलें लेनी भाई ना के, तो इसमें यानी कि इस किस्म का बिजाई अगर भाई करना चाहूँ भाई, बरसात हो रही है और नहीं हो रही तो जो पानीपात के प्रबंध है उड़ जल्दी से इसकी बिजाई कर सके।
1: बिल्कुल अनिल भाई,
0: तो डॉक्टर साहब ये आपने सारी किस्में बताई। डॉक्टर साहब, कई भाई कह रहे हैं कि जो अपने प्राइवेट दुकानें हैं उनकी चकाचौंध माजे हैं और वो हाइब्रिड के नाम पर भी और कड़वी के नाम पर भी प्रोटीन के नाम पर भी एडवर्टाइजमेंट इतनी करते हैं, बहुत मोटी सिरटी दिखा दें दाना अच्छा, तो उनकी चकाचौंध माँ के फंस जाए हैं और फिर बाद में पता चल रहा भाई इसमें तो पैदावार हमारे बिल्कुल कम रहेगी। अच्छा, अपने बताया ना जिस तरह भाई हाइब्रिड है वो एक बार भाई बिजाई कर सकें, दूसरी बार उसने नहीं कर सकते,
1: नया बीज लेना पड़ेगा।
0: तो प्राइवेट आने तो नहीं है, अपने कोथली भरी ठोकी रेपर लगाया और पकड़ा दिया, उन्हें कमाई तो मतलब है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसमें क्या सावधानी करनी चाहिए भैया?
1: किसान भाइयों को देखो अनिल भाई, ऐसा है कि किसान भाइयों को सबसे पहले चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है।
0: बिल्कुल,
1: और हर जो अपना कृषि विभाग है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है,

0: उसके भी हर ज़िले में दफ्तर हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी।
0: अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से या अपने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपने जो भी अधिकारी हैं उनकी सलाह से ही हमेशा जो है अच्छे बीज के जो है बिजाई करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जितने भी अपने किस्में हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से अनुमोदित जो किस्में हैं, इनके बीज की बात करें तो भी अपने हिसारे उपलब्ध होगा या फिर अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके या कोई हरियाणा बीज विकास निगम है, कितने बीज उपलब्ध हो?
0: अनिल भाई, जहाँ तक बीज उपलब्ध होने की बात है, हरियाणा जो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या तो किसान भाई उनसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी
0: और जहाँ जहाँ भी हमारा बीज बिक्री केंद्र हैं वहाँ से वो बीज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे बीज बिक्री उपलब्ध केंद्र नहीं है तो उसमें अपने HSDC के जो भी हैं, हरियाणा बीज विकास निगम है,
1: जी
0: उनका उनके ऊपर भी जो है HAU के जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो उत्तम किस्म के बीज हैं वो उपलब्ध रहते हैं, तो
1: जी
0: किसान भाई वहाँ से संपर्क कर सकते हैं।
1: यानी कि ऊर्जा के भाई बूझ भी इसके हैं भाई, किस्म है, कितने इसकी पैदावार है, वो सारी
0: बिल्कुल
1: बता भी
0: बिल्कुल
1: देंगे
0: जी
1: डॉक्टर साहब। अब इसके बाद बात आ जाए है कि देखो, पहले जो हम बिजाई कराया करते ना बाजरे की, तो आमतौर पर ये रहा करता भाई 12 महीने आप फूसर 12 महीने अनाज, और ईब क्या हो गया कि जितनी भी हमारी फसलें हैं, अच्छी चारा फसल पहले अपने डांगर बछड़ू का तर लगाया कर दे, सब नकदी हो गया, सब न सोचो भाई यार एक चीज़ से हमने आमदनी मिले।
0: बिल्कुल
1: तो बाजरे में आप बात करा कि भाई जिस तरह भाई जो बिजाई करनी आमदनी खातर, इसका जो बढ़िया एक तो समय है ना, और मात बीज की मात्रा अपने बताओ, और बाकी पहले तो छिड़कवा कर दिया कर दे, खाद हैं उर्वरक हैं भाई नहीं डाला कर दे, तो इनमें हाइब्रिड हम कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और जो अपना वैसे बिना हाइब्रिड की हैं कुछ पुरानी किस्में हैं उनमें कितनी पड़ेगी और कितनी इनमें बीज की मात्रा रहेगी?
0: तो अनिल भाई, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बिजाई का समय, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, बड़ा ही उचित समय अब चल रहा है क्योंकि हम बाजरा की बिजाई के लिए सबसे जो उचित समय बताते हैं, जुलाई का जो है पहला पखवाड़ा,
1: जी
0: यानी 15 जुलाई तक आपको किसान भाइयों को अगर बढ़िया पैदावार लेनी है तो कर देनी चाहिए।
1: जी
0: इसके साथ साथ जो बरानी क्षेत्र है जहाँ पे भी 50 से 60 मिलीलीटर बारिश होगी हो, उसी टाइम पे जून के बाद, 10 जून के बाद जब भी अच्छी बारिश जहाँ पे मिले आपको, उसी टाइम पे किसान भाई इसकी बिजाई कर सकते
1: जी
0: हैं। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है किसान भाइयों को, खेत तैयार करने की, गर्मी के दिनों में 101 से 102 जुताई करके, और अपने एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 3 से 4 सालों में गहरी जुताई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि
1: यानी समय मिल जाए, पीछे अपने जिस तरह खाली समय था, जेठ का महीना था,
0: बिल्कुल
1: खूब बफर गर्मी पड़ी है,
0: हाँ जी
1: उसमें जिन भाइयों ने खाली छोड़ दिए तो मेरे ख्याल से उसमें सूत्र कर्मी की समस्या है, और कुछ भाई कोई ज़मीन में कोई कीड़े हैं, कोई बीमारी है, फर्क रह जाए।
0: बिल्कुल मेन तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो बीमारी वगैरह जो है, अगर आप तपत गर्मी में अगर गहरी जुताई करते हैं तो बीमारी काफ़ी हद तक जो है हमारे खेत की वो मिट जाती है।
1: जी
0: दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि नमी का जो संरक्षण है, क्योंकि पानी आप सब समझते हैं किसान भाई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है खेती के
1: बिल्कुल
0: लिए,
1: बिल्कुल जी
0: तो नमी का संरक्षण इसमें बहुत आवश्यक होता है और बाजरे में तो विशेष तौर पर है, तो उसमें बड़ा फ़ायदा किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ का जैसे आपने शुरुआत में कहा था, किसान भाइयों को ये बात बड़ी ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए कि बाजरे की जो बिजाई है केवल उसी क्षेत्र में करनी चाहिए जहाँ पे आपके पानी की निकासी का प्रबंध उचित हो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अगर पानी ठहरता है तो उस क्षेत्र में आपकी बाजरा की बिजाई बढ़िया तरीके से नहीं कामयाब होगी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी
0: किसान भाइयों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, और किसान भाइयों को ये तो पता ही है कि जो हल्की दोमट मिट्टी वाली जो ज़मीन है वही बाजरा के लिए सबसे बढ़िया रहती है, तो
1: बिल्कुल।
0: उसमें अपने बिजाई कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, इसमें बीज की मात्रा कितनी रहेगी?
0: देखो अनिल भाई, बाजरा में जो है बीज ज़्यादा नहीं पड़ता, आप सबको पता है लगभग 1.5 से 2 किलो बीज जो है एक एकड़ के लिए काफ़ी रहता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बीज जो हम 1.5 से 2 किलो बताते हैं उसमें जो पौधे की संख्या है वो महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में कितने पौधे प्रति एकड़ आपको चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको बीज की मात्रा रखनी चाहिए। क्योंकि बरानी के क्षेत्र में हम कहते हैं कि 60 से 65 हज़ार पौधे आपके एक एकड़ में कम से कम रहने चाहिए अगर आपको उचित पैदावार लेनी है तो।
1: तो डॉक्टर साहब, ये 60 से 65 हज़ार जो पौधे आपने बताए,
0: जी
1: ये कितने बीज में संभव है?
0: वही जो बीज की मात्रा है वो 1.5 से 2 किलो में के अंदर आपकी बरानी के अंदर जो है 60 से 65 हज़ार, और जो सिंचित क्षेत्र है उसमें 75 से 80 हज़ार तक की आपकी पौधों की संख्या रह जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तो इस चीज़ का ध्यान रखना है किसान भाइयों को। और एक चीज़ का किसान भाइयों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, हालांकि मैंने जैसे अभी किस्में बताई थी, कोई किस्म 62 से 65 दिन की बताई थी, कोई 68 से 70 दिन की भी बताई थी, इसके अलावा कुछ एक किस्में 80 और 80 से ऊपर दिन की भी बताई थी। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि इन किस्मों से आप में से आपको चुनाव जो करना है, अगर जो किसान भाई हमारे बरानी क्षेत्र में बिजाई करना चाहते हैं तो वो केवल 80 से कम दिन की जो किस्में बताई है केवल उन्हीं में से ही चुनाव,
1: ताकि वो अपना जल्दी पक्के तैयार हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगली फसल का भी अपना ये हो जाए,
0: हाँ
1: नींव पड़ जाए
0: जी,
1: और सूखे की सहनकरण की भी क्षमता उन फसलों में जो कम दिन वाले उनमें ज्यादा पाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और डॉक्टर साहब फिर इसमें बात करा कि अपना भाई खाद और उर्वरक की अगर बात आ जाए तो इसमें कितना फास्फोरस और कितने नाइट्रोजन या दूसरी भाई को इसमें डालनी है खाद?
0: अनिल भाई एक चीज़ बीच में रह गई, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपने शुरुआत में कही थी कि किसान भाई कुछ छिट्टा मार देते हैं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो वो किसान भाइयों को बड़ा ध्यान रखना है कि किसान भाइयों को जो बीज है, आजकल बढ़िया बढ़िया ड्रिल मशीनें आपके पास आई हुई है, रिजर्व सीडर भी आए हुए हैं, तो किसान भाइयों को ड्रिल से ही हमेशा बिजाई करनी चाहिए। और उसके अंदर भी खूड से खूड का जो फासला है वो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का जो फासला है 10 से 12 सेंटीमीटर का रखना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि जो बिजाई है वो ज़्यादा गहरी बाजरे के अंदर ना करें, केवल 2 सेंटीमीटर तक लगभग आपके बीज गहरा पड़ना चाहिए।
1: इससे ज़्यादा डॉक्टर साहब इस मौसम में ये भी गहरी बिजाई कर दी,
0: हाँ जी,
1: ऊपर से रामड़ होगी, पापड़ी लागी है ना, पानी भर गया, अगर पौधा समय पर निकल आया है तो फिर उसमें मौके कम रहे कि भाई पापड़ी और रामड़ की समस्या इनमें
0: नहीं आएंगी।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब किसान भाइयों को बात करेंगे हम खाद की मात्रा के बारे में
1: जी।
0: एक चीज़ का ध्यान और रखना है किसान भाइयों को कि हमेशा जब भी खाद की मात्रा की बात आए, किसान भाइयों को कोई भी फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, हमेशा जो है बिजाई करने से पहले किसान की एक प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग में ये आना चाहिए कि मैं अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवाऊं।
1: बिल्कुल, उसका आधार पर फिर जो
0: हाँ
1: सिफारिश शुदा खाद है वो
0: सिफारिश शुदा जो है हमारी, जैसी की मिट्टी की जांच करवाएंगे वो उसके हिसाब से आपको जो है बीज जो है कितना खाद आपको पड़ना चाहिए खेत में उसके हिसाब से करना चाहिए। फिर भी किसान भाई, काफ़ी किसान ऐसे होते हैं कि भाई नहीं करवा पाए किसी भी स्थिति की वजह से, तो उस स्थिति के अंदर किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 62-63 किलो शुद्ध नत्रजन, यानी कि लगभग 135 किलो यूरिया के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया पड़ना चाहिए उसका, और लगभग 25 किलो शुद्ध फास्फोरस, यानी कि हम 50 किलो डीएपी
1: दे सकें, या फिर 2-2.5 कट्टे अपने सिंगल सुपर फास्फेट के अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो डाल सके हैं। बाकी डॉक्टर साहब इसमें कौन सी चीज़ बढ़िया रहेगी? कई अपना सिंगल सुपर फास्फेट भी डालने हैं और कुछ भाई हैं अपना शॉर्टकट भी कर लें, भाई डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा भी है तो डीएपी डाल दें हैं।
0: अनिल भाई बड़ी अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि काफ़ी समय से हम भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को जागरूक करते आए हैं
1: जी,
0: कि SSP जो है वो DAP की बजाय किसान के लिए बहुत ही आर्थिक स्तर पर, मतलब अगर किसान को मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, अगर आपका एक बैग DAP का आप डालते हो उसकी बजाय 3 बैग अगर आप SSP के डालते हो, तो एक बैग जो आपका DAP का है वो बराबर है आपके 3 बैग SSP के।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन SSP के अंदर आपकी जो 3 बैग है 325 × 3 975 रुपये का, लगभग 1000 रुपये से कम में आपका एक बैग DAP के बराबर आपका काम चल जाएगा।
1: और DAP अपना
0: और DAP आपका 1250 रुपये से 1350 रुपये से,
1: और बाकी प्राइवेट दुकान ना बदभाई ले आओ हैं तो अपने जल्दी के चक्कर में 1400-1500 से भी दिया हो, कई तरह के हैं, तो इसके रूप में अगर डालना है तो फिर इसमें फास्फोरस की भी कैल्शियम की भी कई तरह की पूर्ति हो जाए।
0: बिल्कुल, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सल्फर की भी मात्रा, सल्फर किसान को आप अगर एक बैग DAP का जहाँ जिस भी फसल में डालते हो उसकी बजाय 3 बैग SSP के डालते हो, तो आपकी सबसे पहली बात आपकी 200-250 से 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की बचत होगी, और उसके साथ सल्फर आपको किसान को फ्री में मिलेगा।
1: और ये तो डॉक्टर साहब नेम कोटेड भी आ रही है अपने सिंगल सुपर।
0: दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी SSP है वो सारा मेक इन इंडिया है। जिस तरह से भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस चीज़ पर जोर देती है कि भी किसान जो है भारत की बनी हुई चीज़ों का, उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि उसमें देश की तरक्की छुपी हुई
1: है। बिल्कुल, और उसमें डॉक्टर साहब ये भी है एक उसकी जो शुद्धता है ना, परखे उड़ी चीज़ है, और भजन पता भी।

0: यानी 135 का आधा लगभग हो गया आपका 65-70
1: बिल्कुल
0: किलो,
1: बिल्कुल
0: 65-70 किलो आपका यूरिया बिजाई के टाइम पे, और आपका जो 25 किलो जो शुद्ध फास्फोरस यानी 50 किलो आपका डीएपी और 10 किलो आपका जिंक, ये बिजाई के समय डलेगा।
1: जी
0: आधा किलो आधा आपका जो जितना भी यूरिया है उसका आधा आपको डालना है बिजाई के समय पे, और जो बचा हुआ है उसको आपको दो भागों में बाद में डालना है। यानी कि कब डालना है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, लगभग 21 दिन की, तीन जब आपका सप्ताह की आपकी बाजरा की फसल हो जाए तो एक चौथाई तब, और एक चौथाई उसके लगभग 30 दिन की आपकी हो जाए तब आपको डालना है।
1: तब इसमें डालना है डॉक्टर
0: जी
1: साहब। और डॉक्टर साहब इसमें मान लो जिन भाइयों ने बिजाई कर रखी है या भाई मौसम कूट से कूट का फासला भी इसका अच्छा है और पर्याप्त नमी भी हो तो इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा आ जाए तो
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब उनका नियंत्रण के लिए भी चलते चलते बात करें भाई किस तरह से अपना कोई रासायनिक छिड़काव भी कर सके हैं या फिर अपना भाई निराई गुड़ाई या फिर अड़ाई सही संभव है।
0: अनिल भाई, बाजरे के अंदर आपको पता है कि जब ये बारिश का हमारा जो समय चल रहा है इसमें खरपतवार की समस्या बहुत भयंकर तरीके
1: बिल्कुल
0: से सभी फसलों में होती है। बाजरा तक की अगर तो मुख्य तौर पर कोंदरा जो है हमारा, साठी है, दूब है, मकड़ा है, कागा रोटी है, कई तरह के इसमें खरपतवार
1: सामक
0: आ
1: है,
0: जाते हैं,
1: सांटी है, इस मौसम के बहुत सारे
0: बहुत बहुत
1: खरपतवार।
0: ज़्यादा खरपतवार आ जाते हैं। तो किसान भाइयों को जो जो भाई अगर नुड़ाई कर सकते हैं तो खुरपी या कसौली के द्वारा,
1: जी
0: आप अपने नुड़ाई कर सकते हैं, पहली जो है 3 सप्ताह के भीतर भीतर, और दूसरी जो है 1 महीने की, जब लगभग 5 सप्ताह की आपकी हो जाए तब आपको दोनों टाइम पे नुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जिन किसान भाई के पास ये व्यवस्था नहीं है कि उनके पास लेबर की बड़ी शॉर्टेज रहती है, तो वो किसान भाई रसायनों के द्वारा भी इसकी जो है नियंत्रण बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रसायन आता है एट्राजीन करके,
1: एट्राजिन
0: एट्राजीन एट्राजीन 50% वेटेबल पाउडर के तौर पे आता है, और इसकी मात्रा जो है 400 ग्राम दवाई, 400 ग्राम एट्राजीन 200 से 250 लीटर पानी के अंदर मिला के, और जैसे ही आपने बिजाई करी, बिजाई करने से और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको छिड़काव कर देना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब बिजाई के बाद दे कर देना है
0: बिल्कुल
1: इसका।
0: बिल्कुल, ज़्यादातर किसान भाई का आपने देखा होगा अनिल भाई कि एक एक महीने बाद करते हैं, तब तक जो है फसल के अंदर जो खरपतवार ने नुकसान पहुंचाना होता है वो पहुंचा हो चुका होता है। तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना है कि एक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाजरा की फसल आपने मान लीजिए 15 जुलाई को बिजाई करी,
1: जी
0: तो 15 जुलाई को जब आपने बिजाई की तो आप 15 जुलाई को ही आप इसकी जो है स्प्रे कर सकते हैं। 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच बीच में इसको आप स्प्रे कर
1: यानी
0: दीजिए।
1: 5-7 दिन के अंदर जल्दी से
0: बिल्कुल
1: जल्दी
0: बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि बिजाई जिस दिन की उस दिन भी आप कर
1: तुरंत
0: सकते
1: बाद
0: हैं।
1: भाई अगर
0: बिल्कुल,
1: कर दें।
0: बाजरे के बीज, बाजरे की फसल के ऊपर इस दवाई का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब इसमें जो आपने बताया बीज अपना हाइब्रिड भी है दूसरे भी हैं और जिला स्तर पर अपना कृषि विज्ञान केंद्र है भाई संपर्क करके बीज ला सकते हैं और जो सिफारिशशुदा मात्रा में खाद हैं वो भाई इसमें डालें और समय की बिजाई करें और जो आपने खरपतवार नियंत्रण का बताया भाई जल्दी से जल्दी बिजाई के बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण कर सके हैं तो फिर जो अपना भाई बाजरे की जो एक अच्छी गुणवत्ता भी इसमें आओगी और बढ़िया पैदावार भाई इसमें ले सके हैं। तो इस सब जानकारी खातिर डॉक्टर विनोद मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम जी।
2: या तो सुनी भैया ने बाजरे की उन्नत किस्मा के बारे में बातचीत और काफ़ी समय हो गया तो भैया ने रागनी सुनवाऊंगी बलबीर शास्त्री और साथियों की गाई हुई।

0: या तो सुनी बयान रागनी और इसी के साथ भाई देख ले हिमगढ़ी कहानी। कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर हो रहा समाप्त। भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है और ये भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाइयों इविन दे नाम अपना यो देखे हैं कि चाहे वो बात कुछ आंधी रड़ुआ की है, सेहत की है, और कहीं कहीं पे ये देखे हैं कि भाई अपना जो पानी है व्यर्थता के कारण हम ज़्यादा बहा दें हैं, तो इसका भी प्रबंधन हमने ठीक करके चलना पड़ेगा। और पानी के साथ साथ भाई अपने जो दिनचर्या के काम हैं भाई की, तो अपना उठन बैठन का है, अपनी सेहत का ध्यान रखने का है, तो सबसे पहला सुख निरोगी का बताया गया है। तो भाई अपने चाहे वो योग कर रहे हैं, चाहे अपना अंडा फेरी कर रहे हैं, चाहे पैदल हम चल रहे हैं, थोड़ा हमने सेहत का ध्यान दें ताकि आगे चाल की कोई दिक्कत नहीं आन पावे। अपना भाई बढ़िया खान पान हो है, बढ़िया अंडा फेरी हो जाए तो हमारी सेहत काफ़ी अति ठीक रह जाए। और ग्रामीण संसार में भाई कार्यक्रम छोटा ही चल रहा है, तो आज शुरुआत करेंगे एक रागनी के द्वारा। भाई ने रागनी सुनवाऊंगे रामफल शर्मा और साथियों की गाई हुई।
1: ए रे पति वरदान

0: तो ये सुनी बयान है रामप्रसाद शर्मा और साथियाँ गायु रागनी और कार्यक्रम का समय भाई थोड़ा ही हो रहा है। आजकल तो ये देखे हैं कि चाहे वो बात सेहत की खान पान की हो तो हमने ठीक रखेंगे, तो ये चाहे हमारी वो काया है हमारी चाहे सुख निरोगी रहेगी अपना, और खान पान में थोड़ा हा पेस्टिसाइड हैं तो इनका हम फेर बदल करें, शुद्ध सात्विक खाना हम जरूर खाएं। और भाई ये भी देख लें घड़ी का नहीं, इसी के साथ ग्रामीण संसार कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, चल लेंगे सारे भर भाइयों ने।
1: आप सुन रहे थे ग्रामीण संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
4: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
3: जी,
4: विश्वास और जन कल्याण
3: जी,
4: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा, ये पहली बार हुआ है। वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है।

0: विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
0: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं
1: जी,
0: उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?

0: ये सकारात्मक प्रयास है जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है
1: जी।
0: अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है
1: जी।
0: लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
1: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8,10,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6,500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है। उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है, जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर, तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है जी। और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, और जिसको हम लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छाव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है। जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है

0: उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है, गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
1: जी।
0: आप एक बात बताइए कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
1: जी।
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी?
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
1: जी,
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
1: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है
1: जी।
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
0: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपने इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
1: जी।
0: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
1: जी।
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
1: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं, तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:45 हुए। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुने लोफर फिल्म से गाना। आवाज़ रफ़ी साहब की है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसके लिए तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ लता मंगेशकर की है, दर्पण फिल्म से।

हसरत जयपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया शंकर जयकिशन ने, आवाज़ आशा तई की है शिकार फिल्म से।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत हमने सुना, जिसके लिए धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की जॉनी मेरा नाम फिल्म से। आइए सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से गाना, जिसमें स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा और इसके लिए तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: धर्मात्मा फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ किशोरदा की थी। इंदिवर के लिखे बोल थी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार है बेगम अख्तर, सुनते हैं इनके स्वर में कुछ गजलें।
1: धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: पी सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है।

0: अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के

0: डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability, and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
6: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development, climate finance, energy security, and inclusive economic growth. The summit also provides an opportunity for India to strengthen bilateral partnerships with major economies on the sidelines. Saira.
5: Well, thanks, Ankit, for those updates. Moving on, earlier in the day, Prime Minister Modi reached Evian on a two-day visit to attend the summit, which commenced yesterday. In a social media post after his arrival, the Prime Minister said that he looked forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts towards a more sustainable and prosperous planet. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, UK Prime Minister Keir Starmer, and President of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later this evening, he will attend a gala dinner to be hosted by President Macron. A key engagement during the summit will be PM Modi's meeting tomorrow with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. Our correspondent has filed this report.
7: The agriculture minister gave a clear message that protecting farmers' interest is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. The meeting focused on ensuring that all necessary steps are taken well in advance to safeguard agriculture and farmers from any adverse weather conditions that may arise during the season. Mr. Chauhan gave clear directions that full preparations should be made in advance in those districts where there is a possibility of low rainfall or uneven rainfall. He said that such districts should be clearly identified and crop-wise contingency plans should be prepared in coordination with the state governments so that farmers can be provided immediate alternatives, advice and support that in any weather challenge situation. He strongly emphasized that special attention should be given to water conservation, moisture management, intercropping and alternative crop patterns. With Suparna Sekia, Rohan, Akashwani News, Delhi.
5: Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi, during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishau multi-purpose dam project aimed at rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign an MOU for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishau project will be placed before the Union Cabinet for approval. The Supreme Court today sought response from the centre and states on a plea alleging the misuse of the Unique Identification Authority of India issued Aadhaar cards as proof of citizenship, domicile and residential address. The plea sought directions to restrict its use strictly for identity verification only. A bench of Chief Justice Surya Kant and Justice V. Mohanna issued notices to the centre and all states and union territories. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles or EFR will soon be revived, with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursang under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. He alleged that the previous state government led by Mamata Banerjee had frozen recruitment into the Eastern Frontier Rifles. The Chief Minister said that EFR, once regarded as a historic force, had been reduced to only two battalions during the previous regime. Mr. Adhikari further announced that recruitment to the state police force would soon be opened, creating employment opportunities for a large number of Gurkha youths. He added that at least 30% of seats in state recruitment would be reserved for women. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, the farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we will focus on Narendra Modi government's zero tolerance policy against terrorism.
8: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists were killed in this operation. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashvani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
2: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th-7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized and then acted upon.
8: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across 7 neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashvani News, Professor Anup Kumar Dey from Silchar said open border was a huge issue in Assam and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
9: Since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam, and today fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
8: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
5: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today held a detailed review along with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in the context of air quality management in Delhi NCR and adjoining areas. In a social media post, the minister said that the review was focused on ways and means to efficiently and effectively manage and monitor and crop residue in a bid to combat air pollution in Delhi NCR. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the US and Iran. US has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as US President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow.

0: हूँ। इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। एक फिल्म से आज की फिल्म थी विवाह। आकाशवाणी रोहतक से अब लीजिए सुनिए हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम थारी पसंद।
1: थारी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने अशोक भाई की राम राम। भाइयों इस कार्यक्रम में आपने पहले रागनी सुनवाएंगे श्री भगवान और साथियों की गायोड़। पसंद भेजनिया है गांव अरीगढ़ तहसील सफीदो जिला जींद ते दनपत लांबा कृष्ण रणधीर धर्मवीर कुलदीप विजेंद्र बबलू और लांबा परिवार महमूदपुर रोड गोहाना ते। ये हमारे श्रोता हैं पंडित प्रभुदयाल विजेंद्र दिनेश आजाद लक्ष्य और रोबिन मुदगिल। इसराना जिला पानीपत ते ये चिट्ठियाई और लिखने वाले हैं रमेश जागलान चरण सिंह जागलान लोकेश और धीरेन्द्र जागलान। आदर्श नगर मलोट पंजाब ते ये हमारे श्रोता हैं राज शर्मा मीना योगेश सौरभ और उनका परिवार। और गांव बलियाली जिला भिवानी ते ये चिट्ठियाई और लिखने वाले हैं दर्शन लाल बंसल सुदेश राणी प्रवीण कुमार ममता राणी कमल कुमार गर्विश और तमन्ना बंसल। तो सुने भाई रागनी श्री भगवान और साथियों की गायोड़।

भाई वो अगली रागनी आपने सुनवावांगे फूल कुमार और साथियों की गाई उड़ पसंद भेजनिया है गांव पांडू पंडारा ते बादल सिंह गिल कमलेश रानी गिल टीनू प्रीति और डॉक्टर अंकित गिल और यहीं से ये चिट्ठियाँ ये लिखने वाले हैं जगदीश जय भगवान और राम भक्ति फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल ते ये हमारे श्रोता हैं रामफल मान रामधारी मान पाला राम मान इंद्र सिंह मान अनिल प्रवीण दलजीत मान और पंडित ईश्वर सिंह व सत्यनारायण शर्मा गांव बरौली जिला जींद ते ये हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र सांगवान सचिन अंकित सांगवान और उनके परिवार के सदस्य ये चिट्ठी आई है इंगोली महाराष्ट्र दे और लिखनी है शाहजी बोडखे श्रीमती नंदा बोडखे हनुमान सारिका सुरेखा कुमारी अरवी तन्वी एवं उनके परिवार के सदस्य और ये चिट्ठी आई है उमरा खेड़ा महाराष्ट्र ते अभिजीत गवाहणकार राई श्रीमती सरिता गवाहणकार सिद्धांत गवाहणकार प्रिंस एकांश गवाहणकार और उनके परिवार के सदस्य पोफाली जिला रावतमल ते ये हमारे श्रोता हैं जयराम सिंह कर्ण दिशांत कुमार सिंह कर्ण वंदना धूले अर्पिता रासादेव और उनके परिवार के सदस्य भाणा ब्राह्मण ते ये चिट्ठियाँ और लिखने वाले हैं मेघराज शर्मा गौरव सौरव विजय अजय जितेंद्र और जोगेंद्र शर्मा तो सुनो भाई रागनी फूल कुमार और साथियों की गाई उड़

ఆయనకి.

भैयान रागनी सुनी, गायक कलाकार थे फूल कुंवर और उनके साथी। अगली रागनी आपने सुनावांगे रणबीर सिंह और साथियों की गाई उठ। पसंद भेजनिया है गांव फराशी ते राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह और प्रमोद कुमार। आसी शहर ते राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। पटेल नगर मलोट पंजाब ते ये हमारे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया और उनके परिवार के सदस्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार ते ये हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां। गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करणपुर राजस्थान ते ये हमारे श्रोता हैं राजू टुटेजा, खुश दिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जिन्नू, मीनू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव सेठी, कर्णपुरी, इस्माइल टुटेजा, पाल सिंह मिस्त्री और उनके परिवार के सदस्य। और ये चिट्ठी आई है गांव मदीना जिला रोहतक ते राजेश, नरेश, रमेश, अजीत और ताराचंद। कुंगड़ ते ये हमारे श्रोता हैं गोदाराम, ईश्वर सिंह, रामफड़े, अजय, विजय, प्रकाश, मोहन और राजू। और यहीं से हैं कश्मीर, दिनेश, राकेश और उनके परिवार के सदस्य। गांव रुखित हैं ये हमारे श्रोता अजीत, आजाद, ईश्वर, नसीब, अजमेर, सुरेश और उनके परिवार के सदस्य। मैम ते ये हमारे श्रोता हैं अजीत, सूबे सिंह, रिडकुमल और उनके परिवार के सदस्य। खेड़ी ते हैं ये हमारे श्रोता हैं प्रमोद, नरेश, तेजस, उमेश और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठिया ये गांव बड़म्बाते और लिखण वाले हैं राजेश, कृष्ण, महेश, रामचंद्र, प्यारी देवी, उर्मिला और उनके परिवार के सदस्य। ये चिट्ठिया ये गांव गिड़काली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश थे और लिखण वाले हैं कृष्ण पाल डबास, अनुज राजेंद्र, अजय, बिट्टू और विनोद डबास। और ये चिट्ठी आई है इंडौन शहर जिला करौली राजस्थान थे। लिखण वाले हैं खुशी राम, मोनू, विष्णु, दीपक, राहुल और रिंकू। तो सुनो भाई रागनी रणवीर सिंह बड़वासनिया और उनके साथियों की गाई।

भैया ने रागनी सुनी और अगली रागनी सुनवा गायक कलाकार रहेंगे पाले राम दैया और उनके साथी। पसंद भेजनिया है महेंद्रगढ़ ते ममता गांधी, विकास, वंश, दिया, नोनू, शगुन और उनके परिवार के सदस्य। गांधी जनपद बागपत उत्तर प्रदेश ते ये हमारे श्रोता हैं काशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामफल, दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, हरिओम, ओमपाल, सन्नी, निमेश, अनुज और रिडकुमल। छापरौली उत्तर प्रदेश से ये चिट्ठी, एक और चिट्ठी आई है और लिखने वाले हैं जसवंत सिंह खोकर, राम कुमार, अनिल, सुनील, प्रवीण, सुमित और उनके परिवार के सदस्य। शिशा इशार ते ये हमारे श्रोता हैं अनूप, दिनेश, बलवान, बलजीत, चमन, रणधीर, सुरेंद्र और दीपांशु। गांव अजायब ते ये चिट्ठी आई और लिखने वाले सूबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, ऋषभ देव, ऋषि देव, नरेंद्र, वीरेंद्र, दविता, अंजलि, सागर, टिया और रॉकी नैन। गांव देवरड़ ते हैं श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम, बलवान, धर्मचंद, दया किशन, काला राम और मास्टर रणधीर। और गांव लाठ ते ये हमारे श्रोता हैं केशव, नमन, अनवी, अवि, कपूर सिंह कौशिक, राजवीर फौजी, नाना फौजी, राजेंद्र, रामफल और खेतुराम। तो सुनो भाई रागनी पाले राम दैया और साथियों की गायोड़।

भैया नागली रागनी सुनवाएंगे और गायक कलाकार रहेंगे जगबीर बलम्बिया और उनके साथी। पसंद भेजनिया है लोको कॉलोनी लोहारू ते बिल्लू सिंह चंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा योगेश कुमार और बिरेंद्र कुमार। गांव चिड़िया दुधवा चरखी दादरी ते लिखण वाले हमारे श्रोता हैं सोनू मंजीत तनिष और उनके परिवार के सदस्य। खेड़ी दौलतपुर ते ये चिट्ठियाई और लिखण वाले प्रीत सिंह बिंटू संजय कुमार। खरकड़ी हिसार ते शमशेर दिनेश सुभाष और अमरजीत और यहीं से हैं भागाराम पवन कुमार पंकज और रमेश। खेड़ी चोपटा ते ये हमारे श्रोता हैं पंडित सत्ताराम रेड्डी राजा राम पूनिया राम मेर शर्मा और किताब सिंह सोरान। शाहपुर ते ये हमारे श्रोता हैं प्यारी देवी सुमन अजीत नरेश और उनके परिवार के सदस्य। कनेरा मोहला पटियाला ते ये हमारे श्रोता हैं मुकेश बत्ता नीलम बट्टा नितिन पलक करण गीतू निहारिका वंशिका और उनके परिवार के सदस्य। और झिंझरते हैं महाशय सतबीर शर्मा कौशल्या बाल

फिर एक सपना राजा ने आया, संतों का दिखा लारा, राजपाट सब त्याग दिया फिर।

के सपने का जकर करू सपने में मानस मर जावे कोई शेर की कर सवारी।

भजन रागनी सुनी, गायक कलाकार थे जगबीर सिंह बलंबिया और उनके साथी। और भाइयों ईब एक फरमाइश आई है हरियाणी फिल्म लाडो बसंती की, और गायक कलाकार हैं दिलराज कौर और उनकी सखियां। पसंद भेजनियाँ हैं बड़बू जी सागर मध्य प्रदेश से, रघुनाथ, सुषमा, बबीता, ममता, विनोद, विशाल, ओम प्रकाश और उनके परिवार के सदस्य। लुधेसर तहिए हमारे श्रोता पप्पू राम घाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका, साक्षी और रुचिका देवी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तहिए हमारे श्रोता हैं विनोदपुरी, रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी और आरएसपुरी। शादुल शहर से ये हमारे श्रोता ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश और उनके परिवार के सदस्य। गांव नथाना पंजाब से ये चिट्ठियां और लिखने वाले हैं अरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। गांधी चौक रोपड़े पंजाब से ये चिट्ठियां और लिखने वाले हैं हरदेव मिक्का, बलविंदर मिक्का और मिक्का परिवार। अलेवा जींद से ये हमारे श्रोता नरेश लोहान, जोगेंद्र लोहान और राजकुमार लोहान। जाटू लुहारी ते हैं रामफूल, हरिराम, मदन, साधुराम और आवा सिंह। बिचपड़ी तहसील गोहाना जिला सोनीपत ते ये हमारे श्रोता बलिराम पुनिया, निरंजन, सुनील, वीरेंद्र, ईश्वर पंडित और उनके परिवार के सदस्य। शामड़ी गोहाना ते ये हमारे श्रोता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, शकुंतला, इंद्र प्रकाश, श्रीकांत और संदीप। और गांव उगरा खेड़ी पानीपत ते हैं अनिल मलिक, सुनील, पंकज, प्रीति, परी और तक्ष मलिक। तो सुने भाई ये हरियाणवी फिल्म का गाना लाडो बसंती का, और गायक कलाकार दिलराज कौर और उनकी सखियां।

0: भाई ने हरियाणवी फिल्म का गाना सुने और भाई वो ईव घड़ी करें देख लो, कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त, अशोक भाई ने जाजे दो, सारे बाण भाई ने राम राम।
1: आप सुन रहे थे थारी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर पर, रात्रि के 10:30 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए मनचाहे गीत कार्यक्रम।

मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से आप सभी की चिट्ठियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों का भी कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की आप सभी की फरमाइश के साथ। आप हैं मटोर जिला कैथल से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर हैं इनके साथ। भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक, श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति। सच्चा खेड़ा से चिट्ठी लिख भेजते हैं वेद बिहारी। बागपत यूपी से एहसान अली। तुरनाला वाशिम से आप हैं सुखदेव राउत। पत्रोड़ा अनूपगढ़ से चिट्ठी लिखी है मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील जनागल ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से ख़त मिला है, लिखने वाले हैं राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका, अनामिका, तन्मय गजभिए। और ये श्रोता हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, ईश प्रति, प्रीत शर्मा, सोनिया, बिपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं ललकार फिल्म से गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

बॉबी फिल्म से गीत हमने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की थी, आनंद बख्शी की बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं बचपन फिल्म से गाना। रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत के लिए संगीत दिया। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बताई देते हैं। आप हैं फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भोविक, चरखी दादरी से हमारे श्रोता हैं जगनीश सांगवान, हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी ने खत लिख भेजा है, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, इंदौर एमपी से आप हैं वंदना मराठे, गणेश कार्तिकेय, परी संजना मालती और स्वाति, पुणे से खत लिख भेजते हैं पंकज वाडोदे, आर्य आदि और शैलेश, आदर्श नगर मलोट पंजाब से चिट्ठी मिली है। लिखने वाले श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा। पंखा रोड दिल्ली से हमारे श्रोता हैं पिंटू दीवाना, सतनाम कौर, सन्नी देवी और छन्नी सिंह और राकेश शेट्टी। दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीना देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, निकहत प्रवीण, आरजू, अमराव, आलम और तस्नीम।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आइए सुनते हैं मजरूह का लिखा गीत, जिसके लिए धुन बनाई आरडी बर्मन ने, आवाज़ किशोरदा की है, कुदरत फिल्म से, और सुनवा रही हैं आप सभी की फरमाइश पर, आप हैं प्रमिलागंज आलोट ज़िला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा हैं इनके साथ। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा हैं इनके साथ। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से खत लिख भेजती हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सारथी और सुषमा सारथी। और आप हैं नया पारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी।

अजनबी, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ है किशोरदा की, आनंद बख्शी की बोल है, लक्ष्मी आर डी बर्मन का संगीत है। पसंद आप सभी की है। आप हैं DLF कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष इनके साथ। चकला बाजार सामाना से पप्पू राज, दिलखुश कुछ दिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, पूरा कुछ दिल परिवार। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर, सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर। आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक और मीका विरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा की चिट्ठी हमें मिली है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का खत हमें मिला। और ये श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।

0: बता दूं। वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म से गीत हमने सुना किशोरदा की आवाज़ में, जिसे रचा था आनंद बख्शी ने और इसके लिए धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न होता है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मनचाही गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रोहतक केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में, रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maak Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of operations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishar multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishar project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kurseong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ज़ोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:17 हो चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारे आज के प्रसारण। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए